ਪਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ

0: Hola.
1: Bueno, pues...

पौड़ी चितेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे आपी कर्म कराइंदा वड खो वड़ा वड़ मेदनी सिरै सिर धंदा लाइंदा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6वें चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते

0: को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

0: बिना ज्ञान दे आजादी हमेशा दुखदाई हुंदी है, ते बिना स्वतंत्रता ज्ञान हमेशा बेकार।
1: आओ सरवण करदे हां भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

वार में भी पेश कीती जावेगी। नाल ही प्रोग्राम शक्ति रूपा भी प्रसारित कीता जावेगा। फौजी निराली प्रोग्राम का वेला रहेगा दोपहर 1:15 ते रंगली धरती लैके हाजिर होवांगे दोपहर 2:30। अज दे इस प्रोग्राम विच तुसी सुरेश कुमार सहदेव ते साथियां वल्लों भेटां सुनोगे।

0: आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशद वृत्तान्ताय एक्स माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: बिम्स्टेक सदस्य देशानां गृहमंत्रिणां प्रथमं सम्मेलनं नवदिल्ल्यां दिल्ली घोषणायाः स्वीकरणेन सम्पन्नम्। अस्मिन् घोषणापत्रे बिम्स्टेक सदस्य देशैः आतंकवादं समेत्य सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य तथा आतंकवादं पोषकस्य हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य च कट्वालोचना कृता। घोषणापत्रे सदस्य देशैः संयुक्त राष्ट्र चार्टर इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुसारेण समग्रतया निरन्तरं च प्रयत्नैः आतंकवादस्य तथा हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य च निवारणं प्रतिरोधः समूलोच्छेदनं च कर्तुं स्वसंकल्पः पुनरुक्तः। सदस्य देशैः संयुक्त राष्ट्र संघस्य अधिकारपत्रस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुरूपं व्यापकतया निरन्तरं च प्रयत्नं कृत्वा आतंकवादस्य तथा आतंकवादं प्रोत्साहयतः हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य निवारणं प्रतिरोधः उन्मूलनं च कर्तुं स्वकीयः संकल्पः पुनः दृढीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य हैदराबादे चतुर्थे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलं सम्मुखीकरिष्यति। एषा स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। एस वेले स्वेद दे 7 बज रहे ने। पेश नी हुन तक दिया मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी अनिश्चितता दे बावजूद भारत दा आर्थिक विकास मजबूत नीं ते टिकिया होया है। सूचना ते प्रसारण अते संसदी मामलियां बारे राज मंत्री डॉक्टर एल मुरगन ने अपने औहदे ते राज्यसभा दी मेंबरशिप तो अस्तीफा दे दित्ता। यूपीआई राही गाहक तो व्यापारी दरमियान 2000 रुपए तो वध दे लेन देन ली यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट हुन दिवाली तो बाद लागू कीता जावेगा। भारत ने दोहराया कि लद्दाख भारत दा एक अटुट हिस्सा है अते चीन वल्लों किसी भी तरह दा इनकार इस ताकत तत्व नूं बदल नहीं सकदा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन ली नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी अंतर मंत्रालय समीक्षा मीटिंग कीती। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लाया कि लोकसभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी SIR दे मुद्दे ते देश नूं गुमराह कर रहे हन। पंजाब विच SIR मुकम्मल, वोटरां दी गिनती 2.1 करोड़ तो वध, रहिंदे लोकां लई जल्द ही लाए जाणगे विशेष कैंप। पंजाब दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां वल्लों SAS नगर विखे अति आधुनिक बायो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैबोरेटरी दा उद्घाटन। अमृतसर देहाती पुलिस ने पाकिस्तान दी ISI दी हिमायत प्राप्त गैर कानूनी हथियार अते तमाखा खेज सप्लाई नैटवर्क दा पर्दाफाश करदिआं पुलिस अदारियां ते हमला करन दी साजिश नूं नाकाम कीता अते मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच अज अते पलके लई कई थावां ते गड़ेमारी अते बारिश दा ऑरेंज अलर्ट जारी कीता। ए सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले सवेर दे 7:02 होए ने। पेश है प्रोग्राम सोनी सवेर।
3: चढ़दा सूरज पूरब दे विच लाली नित खलारे, बोलन पंछी आलणिया विचों बैठे पंख खलारे, त्रेल तोते सारे फुल बूटे लगदे बड़े प्यारे, देखो रहमत सोहणे रब दी कैसे रंग खलारे, कैसे रंग खलारे। नमस्कार दोस्तों, सोहणी सवेर लैके हाजर हां आकाशवाणी जलंधर तो। मैं हां थोड़ी दोस्त मोनिका मेहता। उम्मीद करदे हां कि अज दा दिन बड़ा ही सोहणा बीतण वाला है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित की

0: ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नजर रमजन मिलांदे हो, कदे इधर कदे उधर, वफा अपनी जतांदे हो, कदे इधर कदे उधर। किसे दिन डांग खड़केगी, किसे दिन खून डुलेगा, जो लौंदे हो बजांदे हो, कदे इधर कदे उधर। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सोनी सवेर अपनी दोस्त मोनिका दे नाल। दोस्तों, जदों असी अमनो अमान दी गल करदे हां, ते सब तो पहला शुरुआत पता कित्थों होनी चाहिदी है? अपने दिमाग तो। साडा दिमाग एक ऐसा अंतरद्वंद करदा है अपने आप दे नाल, एक ऐसी लड़ाई छेड़दा है कि असी असल मुद्दे तो हट के उस लड़ाई दे विच ही फसे रह जांदे हां। इस लड़ाई झगड़े दे विच खुशी दी गल ए है कि इस साल नोबल शांति पुरस्कार नवी पुल्ले नूं मिलिया है। ओ भारतीय मूल दे दक्षिणी अफ्रीकी कानून दान ने। उन्हां ने मनुखी अधिकारां ते अंतरराष्ट्रीय कानून लई इन्ने सारे काम कीते ने कि उन्हां नूं शांति दा नोबेल पुरस्कार मिलिया है। अपने दोस्तां दी जानकारी दे विच वाधा पाउण लई इह वी दस दईए कि नोबल पुरस्कार अल्फर्ड नोबल होरां ने शुरू कीता सी, जिहड़े डायनामाइट दे खोजी सन। उन्हां ने अपनी वसीयत राहीं नोबल पुरस्कारां दी शुरुआत लई धन रख्या सी। पहले नोबल पुरस्कार साल 1901 दे विच दित्ते गए सन। नोबल शांति पुरस्कार नार्वे दी राजधानी ओस्लो विच दित्ते जांदे हन, जबकि होर नोबल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन विच दित्ते जांदे हन। नोबल पुरस्कार सिर्फ व्यक्तियां नूं ही नहीं मिलदे, ए संस्थावां नूं वी मिलदे ने। नोबल पुरस्कार सानूं ए वी सिखांदे ने दोस्तो कि ज्ञान, हिम्मत ते मनुखता दी सेवा करन दे नाल पूरी दुनिया दे विच असी बदलाव लैके आ सकदे हां। ते कहंदे ने ना, चैरिटी बिगिनस एट होम। सब तो पहला ए शांति दा काम अपने घर तो शुरू करना चाहिदा है। छोटियां छोटियां गल्लां दे विच अपने दिमाग नूं, अपनी एनर्जी नूं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिदा। मारी धारी गल हो जाए तां लेट इट गो कर दो, परा हो जान दो, इदां दे अल्फाज़ां दे नाल अपने आप नूं हल्ला छेड़ी दो। बाकी तुहानूं एनकरेज करन वास्ते, तुहाडे दिन दे विच ऊर्जा भरन वास्ते असीं लैके आने आं प्रोग्राम सोनी सवेर। ते लो फिर हसदे चेहरियां वास्ते इक हसदा मुस्कुरांदा गाना पेश करदे हां।

सेवा देश दी जिंदड़ी ए बड़ी औखी गल्ला करनिया टेर सुखलिया ने जिन्हां देश सेवा विच प्यार पाया उन्हां लख मुसीबतां चलिया ने। प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच अपने सारे दोस्तां दा एक बारी फिर तो निघा स्वागत करदे हुए आओ दोस्तो थानू लेके चलदे हां एक ऐसी जन शक्ति दे वल जिहड़ी हौली हौली लोकां दी सोच बदल रही है ते भारत दा नां पूरी दुनिया दे विच रोशन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली दे यशो भूमि विखे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 दे 10वें संस्करण दा उद्घाटन कीता। इस समागम दे विच 5G 6G ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेमी कंडक्टर वर्गियां आधुनिक तकनीकां टेक्नोलॉजीज ते ध्यान दिता गया। दोस्तों थोड़ा पता है इहदा विशा की सी स्केल विदाउट बाउंड्रीज यानी कि तरक्की दियां कोई हद्दां नहीं हुंदियां। दोस्तों आज मोबाइल सिर्फ फोन नहीं रह गया सुनेहे भेजन दा साधन नहीं रह गया इस तरह ही विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकदे ने छोटे व्यापारी अपने कारोबार नूं अग्गे वधा सकदे ने ते लोक डिजिटल भुगतान राही अपने लैण देण नूं आसान बना सकदे ने। दोस्तों इस पहलकदमी दा सब तों वड्डा मकसद पता की है साडे प्रधानमंत्री साहब दी इह सोच है कि भारत सिर्फ तकनीक दी वरतों करन वाला देश ना बन के रह जाए सगों नवीआं तकनीकां बनाउण वाला एक आधुनिक देश बने। दोस्तों जेकर असी नौजवानां नूं तकनीकी सिख्या नवे हुनर ते सही मौके दवांगे ते भारत दी तरक्की नूं होर मजबूती मिलेगी। याद रखो दोस्तों जदों तकनीक हर नागरिक तक पहुंचदी हो जाएगी ते तरक्की दे मौके अपने आप वध जाणगे। ते आओ दोस्तों फिर मिलके एक ऐसा भारत बनाइए जो तकनीक विच अग्गे होवे मौकियां विच बराबर होवे ते दुनिया दे विच अपनी वखरी पछाण बना सकदा होवे बिल्कुल उसे तरह जिस तरह अपनी एक सोहनी जी पछाण बना रहा है। ए प्रोग्राम सोहनी सवेर जिस नूं तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी जलंधर तों अपनी दोस्त मोनिका दे नाल।

मैं कहनिया हेरा फेरी नहीं दोस्तों, हेरा फेरी करना वैसे भी साड़ी शख्सियत वास्ते साड़ी पर्सनैलिटी वास्ते चंगी गल नहीं है। जो असं रिश्तों के हेरा फेरी करते हैं यानी कि झूठ सच बोलते हैं उदो भी साढ़े चेहरे तो पता लग जाता है। जो असी दिल तो धुरों रिश्ते निभाने तभी साढ़े ख्यालों तो साड़ी समझ तो इस गल की परख हो जाती है। बाकी दोस्तों गल इदा है, सवेरे उठ के सूरज के मत्थे लगना, पंछियों नाल गल्लां बातां करनियां, कुदरत नाल सांझ पानी ते अपने आस पास घूम रही तितलियां नाल दोस्ती करना, इस तो वधिया शौक कोई हो ही नहीं सकता। कभी अपने मोबाइल नूं थोड़ा जिहा परां रख के वट्सएप यूनिवर्सिटी तो छुट्टी लैके अपने आले दुआले देखो, दुनिया किन्नी खूबसूरत है। जरा इमेजिन करो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, थोड़ी अपनी कल्पनाशीलता नूं वधाओ ते तुहानूं पता लगेगा कि बाग दे विच टहलदे टहलदे बूटियां नाल गल्लां करदे करदे कोल लग्या होवे आकाशवाणी दा चैनल, वधिया जे तुसी प्रोग्राम सुन रहे होवो, वधिया वधिया गीत सुन रहे होवो ते नाल नाल सैर कर रहे होवो, मजा ही दुगना हो जांदा जी। इनू

थोड़ी अपनी कल्पनाशीलता नु वधाओ ते थानू पता लगेगा कि बाग दे विच टहलदे बूटियां नाल गल्लां करदे कोल लग्या होवे आकाशवाणी दा चैनल वधिया जी तुसी प्रोग्राम सुन रहे होवो वधिया वधिया गीत सुन रहे होवो ते नाल नाल सैर कर रहे होवो मजा ही दुगना हो जांदा जी इन्नू कहंदे ने सोहणी सवेर उम्मीद करदे हां कि साडे सारे दोस्तां ने अज दी सोहणी सवेर दा लुत्फ उठाया होवेगा ते अपने मन नू समझाया होवेगा बल्ले शेरा हारना नहीं डट के अगे वधना है तुसी अगे ते अपनी अपनी मंजिल हासिल करो आज दा दिन कल नालो भी बेहतर होवे इसी उम्मीद दे नाल हुन थोड़े तो जान दी इजाजत चाहांगी रब राखा सुनदे जाओ आकाशवाणी जलंधर।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
2: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
3: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें

0: बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
5: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का

0: बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धौलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
1: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: धौलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धौलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धौलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेट

0: संपर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट जेईई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: राजस्थान विच गर्ज चमक नाल गड़ेमारी की पेशीनगोई की है। उधर जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु ते होरना कई थावां ते भारी मीह पैण की संभावना भी जताई गई है। भारत ते वेस्ट इंडीज दरमियान पांच मैचों की 2020 लड़ी का चौथा मैच अज हैदराबाद के राजीव गांधी कौमांतरी क्रिकेट स्टेडियम च खेडिया जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2026 तन्वी शर्मा ते किदांबी श्रीकांत ने दूजे दौर विच प्रवेश कर लिया। ते आखर च खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च वीडियो संदेश राही ब्रेकअप भारत अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस नूं संबोधन करेंगे। बिमस्टेक मुल्कां ने सरहद पारों दहशतगर्दी के सारे रूपां की कड़ी निंदा की। केंद्रीय वातावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब ते हरियाणा च पराली सड़न नूं रोकण लई जमीनी पद्धर ते निगरानी ते कार्रवाई नूं तेज करन दी जरूरत ते जोर दित्ता है। बिहार च वैशाली दे राघोपुर च इक किश्ती पलटन कारण 13 लोकां दी मौत। मौसम विभाग वल्लों अज पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत होरना कई सूबां च गरज चमक नाल गड़ेमारी की पेशीनगोई। भारत ते वेस्ट इंडीज दरमियान पांच मैचों की 2020 लड़ी का चौथा मैच अज हैदराबाद च खेडिया जाएगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंगे। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर 1:10। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले सवेर के 8:40 हो रहे हैं। अज विश्व मानक दिवस के मौके पर आओ सुनिए भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री दीपक कुमार सिंगला का सुनेहा।
2: नमस्कार। आज का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विश्व मानक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाना तथा मानकों के विकास में योगदान देने वाले विश्व भर के हजारों विशेषज्ञों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस किसी एक खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण और विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में मानक क्यों महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में इसका उत्तर है कि मानक केवल तकनीकी दस्तावेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता और विश्वास की एक साझा भाषा, कॉमन लैंग्वेज ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड ट्रस्ट हैं और सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानक गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए मापनीय मानदंड, मेजरेबल बेंचमार्क्स निर्धारित करते हैं। प्रत्येक मानक के पीछे एक व्यापक पब्लिक पर्पस होता है, जैसे कि विद्युत उपकरणों के लिए मानक किसी परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। निर्माण सामग्री के लिए मानक हमारे बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करते हैं। ऊर्जा दक्ष उत्पादों के लिए मानक ऊर्जा की कम खपत, कम लागत और बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए मानक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य मानकों का निर्धारण करना है। मानक निर्धारण के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स का भी संचालन करता है, जैसे कि ISI मार्किंग स्कीम, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT प्रोडक्ट्स, सोने और चांदी के आभूषणों के लिए हाल मार्किंग स्कीम। यद्यपि भारतीय मानकों का अनुपालन जनरली स्वैच्छिक है, हालांकि कई ऐसे उत्पाद भी हैं जिन पर

0: लोगों के हितों और सुरक्षा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय मानकों का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCOs क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी करके अनिवार्य किया गया है। अब तक भारत सरकार द्वारा 720 से अधिक उत्पादों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं। विश्व मानक दिवस का उद्देश्य केवल एक दिवस मनाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि सही अर्थों में हमारा उद्देश्य इस अवसर पर उद्योग जगत, उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, रेगुलेटरी बॉडीज, अकेडमिया, R&D इंस्टीट्यूशंस तथा अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना भी है। इसके माध्यम से हम गुणवत्ता की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था के निर्माण में मानकों की भूमिका के प्रति साझे दृष्टिकोण शेयर्ड विजन को और अधिक सुदृढ़ भी करना चाहते हैं। विश्व मानक दिवस 2026 मनाते हुए हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसी एक संस्था और व्यक्ति मात्र की नहीं है। इस व्यवस्था में प्रत्येक हितधारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इस विश्व मानक दिवस पर हम सभी बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण विषय के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनर्दोहराएं और एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य करने का संकल्प लें। आप सभी को विश्व मानक दिवस 2026 की पुनर् बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8:46 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
2: बच्चे बुढ़े अते जवान सौ गल्ला दी एक गला सही सिर्फ पैसे भेजन ले QR कोड स्कैन करीदा है जा पिन पाईदा है पैसे मिलन ले नहीं।
3: RBI कहंदा है QR कोड स्कैन करदे समय जा पिन पौंदे समय थोड़ा ध्यान नाल।
1: प्रोग्राम महक पंजाब दी शुरुआत कर रहे हैं जी फिल्म यार अमूल्य दे इस गीत दे नाल जिसने गाया शाहिद मालिया ने।

दोस्तों, AR रहमान नू अपने करियर विच कई पुरस्कार मिले, जिन्हां विच 7 नैशनल फिल्म अवार्ड, 2 अकैडमी अवार्ड्स, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, 1 बाफ्टा अवार्ड, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 7 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स, 15 फिल्मफेयर अवार्ड्स, 18 फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ दे अलावा 2010 विच उन्हां नू देश दे तीसरे सर्वोच्च सम्मान

हेलो फरमाइश प्रोग्राम शुरू हो गया जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से प्रोग्राम लैके हाजिर हो गई है जी तुहाडी होस्ट ते दोस्त देविका भाई। दोस्तों तुहानू सारिया नू पता है कि इस प्रोग्राम विच तुसी सुन सकते हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत, इसलिए करना की है ये भी तुहानू सारिया नू पता है, पर जिहड़े साडे नवे लिसनर साडे नाल जुड़े ने उन्हां लई दस देना जरूरी है भाई। इसलिए तुसी चुकना है फोन ते मिलाना है साडा नंबर। जी हाँ, साडा नंबर है 2342-173 ते नंबर मिला के पहुँच जाना जी साडे स्टूडियो, साडे नाल करनियां गल्लां बातां, सानू दसनी है अपनी फरमाइश जिहड़ी असी पूरी करांगे। ते जिहड़े साडे सुनन वाले सानू जलंधर तों बाहरों कॉल कर रहे होंगे ना, उन्हां लई भी ये दस देना जरूरी है भी कॉल करन तो पहला ना जलंधर का एरिया कोड लगा लेना। जलंधर का एरिया कोड है जी 0181। सो फिर जो तक प्रोग्राम के पहले कॉलर का इंतजार करते हैं, प्रोग्राम जो तुहानू सुनवाने मोहित चौहान की आवाज़ विच फिल्म तमाशा का एक गीत

0: कुमार सानू दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च अगले कॉलर भी साडा नंबर 2342173 मिला के साडे कोल आ पहुंचे ने। आओ जानदे आ कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: मैडम जी मैं पॉल बोलदा सरबा नगर जलंधर तों।
0: पॉल जी बहुत-बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया मैडम, ठीक है तुसीं अपने सुणाओ? साडा हाल चाल बहुत वधिया, मौसम हुण बदली हो रिहा है
0: जी जी,
1: अगे नालों गर्मी घट गई है हुण काफी, ते सर्दी वाला ही जा रहे हैं हुण
0: जी जी,
1: ते हुण ठंडे पानी नूं बिलकुल अवॉइड करना चाहिए। वैसे तां असीं तां पूरियां गर्मियां भी नहीं कदी ठंडा पानी पीता
0: जी, ते हुण तां वैसे ही मतलब ही नहीं
1: जी, हो गया ना मौसम।
0: हां जी, ते फरमाइश दस दो पॉल जी, केड़ी लेके आए हो, केड़ा गीत सुना दिए?
1: मैडम जी फिल्म दा नाम है संबंध, ते गीत दे बोल है चल अकेला चल अकेला,
0: मुकेश दी आवाज़ च। एक गीत आएगा जी तुहाडे रेडियो सेट ते, बस एक छोटे जे अंतराल तो बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई।
1: मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जी तुहाडा।
2: तां शुरू करिए इन्वेस्टमेंट दा सबक।

0: फिल्म जब प्यार किसी से होता है दे इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साडे अगले कॉलर भी आ पहुँचे ने आओ जानते हैं कौन आए ने कितों आए ने ते जानते हैं उन्होंने फरमाइश हैलो
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं बस गैरों को याद किया जाता है काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर आकाशवाणी में याद किया जाता है।
0: जी वहाँ
1: मैडम जी जय माता दी
0: जय माता दी जी कौन बोल रहे ने ते कितों बोल रहे ने
1: सतीश गुलियानी मार्केट दिलकुशा शहर जलंधर रहा अपने दोस्तों के दिल के अंदर सारे कहता जी जय माता दी
0: जी सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच की हाल चाल ने हाल चाल
1: तो
0: खैर
1: वधिया मैडम जी फर्स्ट क्लास है रेडियो ना जुड़िया ते हाल चाल माड़ा हो ही नहीं सकता
0: जी जी ये गल तो सही कही तुसी ते अज
1: कहते
0: केड़ी
1: जी जिंदगी
0: फरमाइश
1: दे विच
0: जी
1: बच्चे कहते जी सानू कोई दसो तरीका भी जिंदगी कि जीनी चाहिए थी। मैं जी जिंदगी लोन
0: जी
1: ते लावा दोनों सोच समझ के लेनी चाहिए
0: जी
1: क्योंकि लोन भी ज्यादा चढ़ जाए उतरता नहीं जी जाना लोग कभी भी जिंदगी च उन्ना ही गुजारा करो जिन्ना तेरे को हैगा
0: जी जी
1: ते लावा भी लेनी है तो सोच समझ के लो आगे अगे जाके कोई परेशानी ना हो
0: चलो जी ए दा होगी गल हुन अपने गीत दसो केड़ा सुनना है
1: दो रास्ते ला दो जी
0: एक
1: चुप के तारे नजारे हो क्या बात हो गई
0: जी जी
1: हमारी फोन कॉल लगी दिल में आपसे मुलाकात हो गई।
0: लो जी गीत जरूर आएगा तो हाड़े रेडियो सेट ते पर अंतराल दा वेला हो गया है अंतराल तो बाद इंजॉय करना जी गीत बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए
2: झोने की जिहड़ी खरीद है वो 1 अक्तूबर तो शुरू हो चुकी है।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम।

0: मोहम्मद रफ़ी दे लता मंगेशकर दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च अगले कॉलर भी साढ़े को आ गए ने, आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: अटवाल नाल बड़ी हैबवाल लुधियाना तो बलदेव सिंह मदर बोल रहे हैं जी।
0: बलदेव जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: शुक्रिया जी, सब ठीक ठाक ने जी।
0: जी ठीक ठाक ही चाहिए, बहुत वधिया जी। ते गीत अज दस दो केड़ा सुनना चाहते हो, केड़ी फरमाइश पूरी कर दी?
1: कुमार जी पुरानी फिल्म जी शहीद
0: जी,
1: उसका गाना है लता मंगेशकर जी बाद जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में जाने तुझको खबर कब होगी।
0: लो जी ये गीत आ रहा तो हाडे रेडियो सेट ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई।
1: शुक्रिया जी, ओके।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇਵਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है।
2: भारत और आसियान हिंद प्रशांत

0: क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। भारत में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 12% रही। देश में टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। सरकार ने टीबी उन्मूलन के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वे कल राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और के श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी की यवोन ली से होगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

प्रोग्राम शुरू हो चुक्या है जी। धमक जलंधर पैंदी, मैं हाँ निधि चुग। ते इस प्रोग्राम च साडे नंबर 9496536077 ते कई सारे स्रोतियां ने वट्सएप मैसेज किए ने ते दस्या है कि वो केड़ा गीत सुनना चाहते हैं। आओ फिर वेखते हैं कि सानू अज पहला मैसेज किदा आया जी। पहला मैसेज आया कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा दा। अगले साथी ने जी ज़िला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य एंजल नेहा अंजलि ते शुभम ते नाल लवली पिंड ते डाकखाना लोहगढ़ ठाकुरा वाला ज़िला फिरोजपुर तो लिखते ने सवरन सिंह गिल दलजीत सिंह गुरनूर सिंह डॉक्टर राम कुमार नारंग ते बलदेव सिंह। अगले साथी ने जी सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि अश्विन मंगलाबेन ते राजेंद्र जी शाह पद्मा टॉकिस नेपा नगर मध्य प्रदेश तो पिंड शाहपुर मैतपुर तो लिखते ने बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पाहुल जोत सिंह अनाहत कौर लवप्रीत कौर परविंदर कौर ते हरप्रीत कौर के नाल ही गगनदीप सिंह। अगले साथी ने जी दतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा ते नोखेलाल वर्मा। श्री फतेहगढ़ साहिब तो लिखते ने रामनाथ अतापुर सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਬ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਟਾਈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਦਲ। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: श्रोतियां दी जानकारी ली सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
0: प्रोग्राम सुन रहे तुसी धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज कित्थों आया जी, आओ वेखदे हां। अगला मैसेज आया है न्यू माधोपुरी लुधियाना तो सुरेंद्र शर्मा, सीमा शर्मा, प्रिंस शर्मा दा। अगले साथी ने जी अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाल हुक डावर ते मोहम्मद उमर डावर भाटापारा छत्तीसगढ़ तो लिखते ने जी। सोहन जोशी ते पहला मैसेज सीगा संजय कलोनी खंडवा तो। अगले साथी ने जी बिट्टू जैन, मट्टू जैन, दीपक जैन ढाका मंडी तो ते न्यूजीलैंड तो लिखते ने। गौतम जैन, राजेश जैन, अरुणा ते अगले साथी ने सतीश कुमार बांसल पिंड सावंत खेड़ा नेड़े मंडी डबवाली तो। अगली फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय ते हैप्पी राय दी। दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर तो लिखते ने प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय ते प्रांजल रॉय। पिंड साबुआना फाजिलका तो मैसेज है करण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश मानव, अनुरीत ते परीश कंबोज दा। अगले साथी ने भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा ते पूजा परिहार। अगली फरमाइश आई है सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रेवाड़ ते चंद्रकला रेवाड़ दी। गुरमीत सिंह मीता लिखते ने साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो। स्वरण सिंह पिंड दोलेवाला जिला मोगा तो ते कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ते इशिता अरोड़ा। ए मैसेज है जी मजनू दा टिल्ला तो। पिंड फुलो मिठी जिला बठिंडा तो मैसेज है राम सिंह टेलर, लक्ष्मण सिंह, कुलविंदर सिंह, मनप्रीत कौर, जसप्रीत जस्सी दा ते नाल ही गुणताज वीर सिंह। अगले साथी ने मलोड़ पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, साइना शर्मा ते निवान शर्मा। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच

0: भाखरे शाहजी नगर ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र तो। करणवीर हाउस तो मैसेज है जी भुच्चो बठिंडा पंजाब तो। करमवीर प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन ते अभिजोत। जलालाबाद वैस तो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा। पिंड अलवाना मियाना तहसील पायल जिला लुधियाना तो लिखते हैं दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा महतवीर सिंह राजपूत रायपुर ते गुरदीप सिंह कटवाल मीतोबाई सुखचैन रानो परवीन नवीन अनमोल बूटा मनीता नवदीप खुशदीप निर्मल परमजीत गुरसेवक गुरबख्श साहिबा मिर्जा ए मैसेज है जी करनीखेड़ा फाजिलका पंजाब तो। ते अगले साथी ने पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल सीमा लक्षिता यशिका विद्या देवी ते पिंड टानी लाल खां तो नोहर ते जावेद खान अरमान खान इमरान खान सीमा बानो विनोद खान। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दें नछत्तर गिल ते गुरमीत ते नाल ही लैंबर हुसैनपुरी दी आवाज़ विच।
1: Life the lesson.

लामनी, मोहम्मद उमर कासमी ते हाजी अयूब शेरीदा। अगले साथी ने अमरीक सिंह टेलर मास्टर जलान जिला संगरूर तो। अगली फरमाइश आई है गुरदासपुर तो प्रीतम दास अंगुराना, सत्या देवी अंगुराना, वानिया ते अरमान दी ते अविताज लिखते ने जी कैनेडा तो। पिंड चजूड़ी चगुड़ी जिला यमुनानगर तो मैसेज है रणधीर वांगर गुरमेजो गौरव परवीन युगम वीरेन मनकिरत ते मनराज दा। अगले साथी ने मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र तो लिखते ने सोपान तायड़े, पी एस नहावकर, वसंत राव भोजने ते मोहन करांगले। गिद्दड़ बहा तो मैसेज है मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल निताशा, कैरवी तनेजा दा। हरिंदर सिंह मोनी लिखते ने पिंड कुलारा नाभा पंजाब तो। मोहाली चंडीगढ़ तो मैसेज है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह दा ते कालका तो लिखते ने शुभ चंद्र बजाज, साहिब बजाज ते बिट्टा बजाज। अगले साथी ने जी नेक राम, यशपाल, राखा राम, कुंडू राम, बाबा राम, जनकर राम, मैरी कुले जम्मू तो। अगली फरमाइश आई है पिंड ते डाखाना खुईया सरवर, तहसील अबोहर, जिला फाजिलका तो आस्था, जयश्री, संतोष चावला, हेमन दीपक, रमेश चावला दी। नाल ही लिखते ने रायजल, हेजल, विहान चावला, रिबू बिबू, वीहू चावला। अगले साथी ने प्रेम खुराना, परवीन खुराना, अलीशा खुराना, अरमान, राकेश, ममता, अनन्या, अनुष्का, पिंड बिल्लीमार, जलालाबाद तो। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ तो लिखते ने कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी ते ऋषभ मरावी। ते अगला मैसेज है सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा, तेग फतेह सिंह रखरा ते जसगुन रखरा दा बागा पुराना तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर करदे हां हरभजन मान दी आवाज़ विच।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meter ਯਾਨੀ 873 kHz 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है।

0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं, जो अब बढ़कर लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार, प्रोग्राम वसदे वेले लेके कोमल हाजिर
1: और नाल हाजिर है जी ज्योति लेके प्रोग्राम वसदे वेले। ते कोमल जी देखो बड़े ही पावन दिनां दे विच अज साडी हाजिरी लगी है इस वेले च।
0: बिल्कुल तुहाडी गल सही है क्योंकि नवरात्रे चल रहे ने, चारों तरफ जिहड़ा है ना भगती दा जिहड़ा इक आलम छाया होया है, मैं सही दसा, और मंदिर सारे देखा जाए इन्ने सोने सजाए हुए ने और जगह जगह ते बच्चे जड़े ने ना वो बड़ी

लो जी, गीत तो बात तरोताज़ा होके एक बार फिर तो सी हाजिर हो गया और प्रोग्राम चल रहा है वास्ते वेड़े। और कुमल जी, असी जानकारियां मनोरंजन नाल नाल अपने स्रोतियां दे नाल सांझियां करते हैं। और देखो, जानकारियां दी गल करिए ते समय समय ते सरकार वालों बहुत सारियां योजनावां जिहड़ियां है उलीकियां जांदियां ने, जिस दी सांझ असी स्रोतियां नाल पांदे रहिंदे आ। इसे तरह आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार दी इक प्रमुख सेहत योजना है, जिसनूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। और इस योजना के तहत देश के गरीब ते आर्थिक पक्षों जो कमज़ोर परिवार ने उन्होंने जो हस्पतालों के भर्ती होना पैंदा है या भर्ती होंदे ने जो, तो फिर उन्होंने मुफ्त सेहत सेवावां जिहड़ियां है

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
2: We should also work against piracy.
3: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में

0: ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ हुण सुनदे हां साडे अज प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

0: प्रादेशिक खबरां। साढ़े छे बजे देहाती प्रोग्राम च काम दियां गल्लां। अज दे भाअ तों इलावा मेरी खेती तहत अज तुसी नवे फलदार बूटियां दी देखभाल संबंधी डॉक्टर सवरीत खहरा तों जानकारी हासिल करोगे। सात बज के दस मिनट ते साढ़े दिल्ली केंद्र तों सुनना प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा। सात बज के पंताली मिनट ते सुनोगे राजेश अधिया दी हिंदी वार्ता, भारतीय संस्कृति में शारदीय नवरात्रे। आठ बज के दस मिनट ते जन सेवा तो देश सेवा तहत आज पेश करांगे तीन तलाक ते एडवोकेट गुरविंदर सिंह प्रूथी नाल होई गलबात। साढ़े आठ बजे सुनना पंजाबी खबरां। आठ बज के पंताली मिनट ते समाचार संध्या, नौ बजे न्यूज एट नाइन, सवा नौ बजे स्पॉटलाइट ते साढ़े नौ बजे चर्चा का विषय साढ़े दिल्ली केंद्र तों। मुख खबरां तो बाद दस बज के दो मिनट ते तुहाडे फरमाइशी गीतां ते आधारित प्रोग्राम होवेगा तुहाडी फरमाइश। सभा का समापन करांगे 11 बजे हिंदी समाचार ते 11 बज के 5 मिनट ते अंग्रेजी समाचार नाल। ए सी साडे अज प्रसारित किए जाण वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले दोपहर दे 1:10 हो रहे ने। आहुन सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।
4: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तों प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उन्होंने सरकार पंजाब की सिक्ख्या प्रणाली नू बदल रही है आते नौजवानों नू मजबूत बनाने लिए रोजगार के मौके पैदा कर रही है। उन्होंने जोर दे के कहा कि मुख टीचा नौकरी लभण वालियां नू नौकरी देण वालियां विच बदलना है। कलाइके गुजराल पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी कपूरथला के 14वें कन्वोकेशन विच बोलदे उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया ते योग्यता के आधार से 70,000 सरकारी नौकरियां पैदा कीतियां ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्वोकेशन विच विद्यार्थियों नूं डिग्रियां प्रदान करन ते उन्हां नूं खुशी है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या ते खेडां पंजाब दे रोशन भविख दीआं कुंजियां ने। ग्रैजुएट विद्यार्थियों नूं वधाई दिंदे होए मुख्यमंत्री ने उन्हां नूं रंगला पंजाब बनाउण लई अपने ज्ञान हुनर ते उद्यमी भावना की वरतों करन दी अपील कीती। पंजाब के व्यापार ते सनत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने हवाई फौज के साबका मुखी एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ सेवामुक्त नाल चंडीगढ़ विखे 9वीं CII मैनुफैक्चरिंग एक्सीलेंस नुमाइश का उद्घाटन किया। इस मौके मंत्री ने कहा कि पंजाब नू साल 2022 तो लैके हुण तक 1.92 लाख करोड़ रुपए दियां निवेश दर्ज तजवीज़ां हासिल होईयां ने, जिस विच 6.5 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। पंजाब सूबा हुण समाबद्ध प्रवानगियां दे नाल 125% तक माली प्रोत्साहना की पेशकश कर रहा है। श्री अरोड़ा ने यह भी कहा कि सूबा सरकार सनत दे नाल है। उन्होंने कहा कि होर किसी भी सूबे को अजिही सनत पक्षी नीति नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकार नवे तैयार किए गए फास्ट ट्रैक पंजाब

फौजी वीरो जय हिंद। मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है फौजी वीरां लई। दोस्तों फौजी वीरो एक अजिहे एहसास नूं बयान करदे ने साडे कई गीत जो साडे दिल दे अंदर बसे हुंदे ने। दिल दी धड़कन जदों काबू तों बाहर हो जाए तो कुछ वखरा करन नूं जी करे, इहो जे एहसास नूं लैके आउंदा है साडा अज दा पहला गीत। फिल्म का नाम है परदेस ते इस गीत नूं आवाज़ दिती है सोनू निगम ने।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: की कहा तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
3: लाओ जी, आज तो हमने दसंगा वायरल ना होने दे तरीके।
4: ओ लोकीता, वायरल होने दे तरीके दस दे या, ते तू वायरल ना होंदा?
3: सोशल मीडिया ते वायरल होने नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
5: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
6: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तों विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समें विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026

0: 26 तक। पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समें दा ध्यान रखण।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है फिल्म पत्थर के फूल दा। इस गीत नु आवाज दिती है लता मंगेशकर ते एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

0: और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
1: मोबाइल फोन उद्योग की मिसाल दिंदे श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने शुरू में असैम्बली ध्यान केंद्रित किया ते फिर मोड्यूल और हिस्से पुर्जियां के निर्माण में विस्तार किया। वणज मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 सालों में 38 विकसित देशों नाल व्यापार समझौतों ते दस्तखत किए ने। नवी दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनमी फोरम में बोलदे श्री गोयल ने कहा कि भारत का टीचा भारतीय कारोबारों लिए बाजार पहुंच वधाउणा ते देश के बाजारों विश्वव्यापी भाईवालों लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कैनेडा मैक्सीको मुरकोसर यूरेशिया और कई होर देशों व्यापार समझौतों से गलबात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में वीडियो संदेश राही बृहत्तर भारत दुनिया में भारत के सभ्याचारक संबंधों बारे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधन करेंगे। केंद्रीय सभ्याचार मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कानफ्रेंस में हिस्सा लेंगे। 3 दिना कानफ्रेंस दौरान 50 देशों के डेलीगेट राजदूत और विद्वान भारत के इतिहास और समकाली सभ्याचारक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष वीडियो संदेश राही इकट्ठ को संबोधन करेंगे। चीन जापान मंगोलिया नेपाल और ईरान समेत देशों के भागीदार सांझी सभ्याचारक विरासत और सभ्यता के आदान प्रदान से चर्चा में योगदान पाएंगे। यह कानफ्रेंस ग्रेटर इंडिया सोसायटी जिसन ग्रेटर इंडिया कौंसल भी कहा जाता है की शताब्दी मनाने लिए आयोजित की जा रही है। कनेडा ते भारत ने एक व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते लिए गलबात तेज कर दी है। गलबात का उद्देश 2026 के अंत तक समझौते को अंतम रूप देना है। 5 से 9 अक्तूबर तक ओटावा में 5वें गेड़ की गलबात तो बाद यह गलबात अगे वधी है। दोवें देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों के हिस्से वजों दुवल्ले व्यापार और निवेश को वधाने की कोशिश कर रहे हैं। कनेडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस हफ्ते नवी दिल्ली में वणज के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नाल मुलाकात की सी। ग्लोबल अफेयरस कनेडा अनुसार दोवें धिरां ने गलबात में प्रगति की समीक्षा की और तजवीजशुदा समझौते को अगे वधाउण के ढंग तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्तूबर तक चलने वाले व्यापार मिशन लिए लगभग 300 डेलीगेट मुंबई और बंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे दौरान वह ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिज एरोस्पेस आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और उन्नत निर्माण खेतरों में व्यापार और निवेश के मौकों की घोख करेंगे। कनेडा का उद्देश 2030 तक भारत नाल सालाना दुवल्ले व्यापार को 7 ट्रिलियन डॉलर तक वधाना है। यह खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। तो यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अज कोकरोच जनता पार्टी CJP के आगुआ सौरव दास ते आशुतोष रंका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिता है। पार्टी के एक होर आगू अजिंक्य शिंदे निजी मुचरके से रिहा कर दिता गया। दिल्ली पुलिस ने तिना आगुआ जंत्र मंत्र दाखिल होने की कोशिश करने की हिरासत में लिया। एक दिन पहला ही जंत्र मंत्र विरोध प्रदर्शन वाले स्थान की सूची तो हटा दिता गया है। पुलिस अनुसार आगुआ ने कल कथित तौर पर बंद गेटा से रुकावटा पार करद राष्ट्रीय झंडा लैके नारेबाजी की। सुरक्षा मुलाजमान ने उन्होंने रोकने की कोशिश की। तिना आगुआ होर खिलाफ गैर कानूनी इकट्ठ के हुक्मों की उलंघना समेत वक् वक् दोषों तहत FIR दर्ज की गई सी। उन्होंने पहला जाफरपुर कलां थाने लिजाया गया ते फिर अज तड़के संसद मार्ग थाने विच तब्दील कर दिता गया। CJP के कानूनी मामलों के मुखी रतना सिंह ने इल्जाम लाया कि आगुआ देर रात तक उन्होंने वकीलों मिलने की आग्ञा नहीं दी गई। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में बीती रात गंगा नदी में एक किश्ती के पलटन नाल 13 लोगों की मौत हो गई जदों के 6 नूं बचा लिया गया। मृतकों में ज्यादातर नाबालग ने जो किश्ती राही एक दावत में शामिल होने की यात्रा कर रहे सन। किश्ती लगभग 15 से 20 लोग सवार सन। 7 नूं बेहतर इलाज लिए दूजे हस्पताल भेजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्ती हादसे में हुई मौतों पर दुख प्रगट किया है। भारत में 2015 से 2024 दरमियान TB के नवे केसों में 21% की कमी दर्ज की गई है जदों के विश्व पद्धर से 12% की कमी आई है। देश में TB के इलाज का दायरा 92% तक पहुंच गया जदों के विश्व पद्धर से यह औसत 78% है। सरकार ने TB को खत्म करने के यत्न तेज कर दिए ने। इस विच टेस्टिंग के दायरे का विस्थार करना आधुनिक तकनोलॉजी की वरतों से जनतक भागीदारी वधाना शामिल है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं असदुल्ला। भारत ने भारत आसियान मुश्तरका तहकीकी एजेंडा तैयार करने और बहरी सिक्योरिटी और उभरती टेक्नोलॉजीज पर तवज्जो मरकूज करने की तजवीज दी है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि दुनिया नए बैन अल-अक़वामी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है, कई ममालिक आलमी मामलात में वसी तर रोल अदा कर रहे हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क का सरकारी कर्ज का तनासुब मजमू घरेलू पैदावार GDP के मुकाबले में 61% से कम होकर 55% रह गया है। इस साल सितम्बर में थोक कीमतों के इशारे की इफरात जर बढ़कर 11.39% हो गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में आज हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते के बारे में मुश्तरका मफादात रखते हैं। आज सुबह नई दिल्ली में आसियान भारत दिफाई थिंक टैंक फोरम से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आसियान को भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक भारत के नजरिए में मरकजी हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि भारत की मशिक नवाज पॉलिसी जुनूब मशिकी एशियाई मुल्कों के साथ मुसावी शराकत दार की हैसियत से काम करने के लिए भारत के तवील मुद्दती अज़्म की अक्कासी करती है।
1: फॉर इंडिया आसियान इस

0: central to our Indo-Pacific vision. India's Act East policy, Sagar and Mahasagar vision, advocate open multipolar cooperation, and we align these approaches through ASEAN-led mechanism. Our Act East policy is a long-term commitment to working with Southeast Asia as an equal partner. Our collective objective should be to build trust, respect for each other's sovereignty, and keep channels of dialogue open.
1: साल 2026 को आसियान भारत बहरी तआवुन का साल करार दिए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने समंदरी हदूद से मुतालिक निगरानी और मामलात में इजाफे, इत्तलात के तबादले को बेहतर बनाने और हंगामी हालात बहरी कजाकी और गैर कानूनी माहिगीरी से निमटने के लिए इज्तिमाई सलाहियतों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा है कि आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चैन में लागत के साथ साथ एतमाद और साइबर सिक्योरिटी की अहमियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि भारत का मकसद सेमी कंडक्टर के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और तैयार शुदा प्रोडक्ट्स की जाँच के शोबे में खुद को एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर कायम करना है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि पायदार मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मुकम्मल इको निजाम तश्कील देना जरूरी है।
2: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इको सिस्टम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड, सो वी हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट दैट केपेबिलिटी इन आर कंट्री इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल्स, हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग देम, प्रोसेसिंग देम, स्टोरिंग देम, यूजिंग देम इन द चिप्स और एवरी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, and making sure that we develop an ecosystem which becomes good for us, good for the world.
1: जनाब वैष्णो ने कहा कि भारत अपनी मईशत को मजबूत बना रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 बरस में मुल्क का सरकारी कर्ज का तनासुब मजमुई घरेलू पैदावार GDP के मुकाबले में 61% से कम होकर 55% रह गया है। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का मकसद मालियाती, इक्तसादी और तकनीकी शोबों में पायदारी और मजबूती को बढ़ाना है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने जहाज साजी से मुतालिक कौमी मिशन के तहत भारत की जहाज साजी की सनत को तआवुन फराहम करने की खातिर कर्ज खतरात से मुतालिक बीमे के 2 खसूसी प्रोडक्ट्स का ऐलान किया है। मुंबई में बहरी रियासती तरक्याती कौंसिल MSDC की 21वीं मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि जहाज साजी के प्रोजेक्ट से मुतालिक क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी में बरामदात से मुतालिक प्रोजेक्टों का इहाता किया जाएगा, जबकि बिजनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी शिप बिल्डर्स घरेलू प्रोजेक्टों को तहफ़ फराहम करेंगे। भारत की थोक कीमतों के इशारे WPI पर मबनी अफरात जर सालाना बुनियाद पर सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई, जो अगस्त में 9.92% थी। कॉमर्स और सनत की वजारत की तरफ से जारी किए गए अबूरी आदाद शुमार के मुताबिक मादनियाती तेल, गजाई अशिया, खाम पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कोयले और लिग्नाइट, बुनियादी धातु, केमिकल और कीमियाई मसनूआत, टेक्सटाइल, रबड़ और प्लास्टिक मसनूआत की ज्यादा कीमत की वजह गुज़श्ता महीने अफराते ज़र में इजाफा हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह इस नज़रिए ने भारत की तरक्की और कौमी सलामती के इकदामात में अहम सुतून की हैसियत रखने वाले स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाया है।
3: अरुणाचल प्रदेश की सेला टनल इस नजरिए के तई अहद बस्तगी की एक नुमाया मिसाल है। ये टनल स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम है। तवांग खित्ते को हर तरह के मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करती है। इस टनल को 9 मार्च 2024 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम वक्फ किया था और ये सरहदी सड़कों की तंजीम BRO की तरफ से बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुकम्मल किया गया एक तारीखी प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के सेला टनल तकरीबन 13,000 ऊंचाई पर बनाई गई है और ये शुमाली हिमालयी खित्ते के दुश्वार गुजार रास्तों में इंजीनियरिंग की काबिले जिक्र कामयाबी को जाहिर करती है। ये टनल खास तौर पर बर्फबारी और दुश्वार मौसमी हालात में अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर और तवांग के दरमियान ज्यादा काबिले एतबार कनेक्टिविटी फराहम करती है।

0: जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने आज कहा है कि दरमियानी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले कवायद व जवाबित पर अमल दरामद में इत्तिफाकी राय, बाहमी मफाहमत और मुश्तरका मफादात क्लीदी रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि अब वो दौर खत्म हो चुका है कि जब कोई मुल्क धमकियों के जरिए दूसरे मुल्कों पर अपनी शराइत मुसल्लत करता था। उन्होंने उजागर किया कि दुनिया एक नए बैन अल-अक़वामी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है जिसमें ज्यादा तादाद में ममालिक आलमी मामलात में ज्यादा मौसर रोल अदा कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने एक क़रारदाद

फौजी वीरू प्रोग्राम च अगला गीत हाजर है फिल्म हीना दा। इस गीत नू अपनी मिठी आवाज़ नाल सजाया है लता मंगेशकर ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा विश्व जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
2: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
3: थ्रू आसियान लेड मैकेनिज्म
1: श्री सिंह ने कहा।

0: कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: वी शुड ऑल्सो वर्क अगेंस्ट पायरेसी।
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: प्रोटेक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडिल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
3: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
4: $10 trillion of GDP,
5: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 trillion की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 trillion की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 trillion की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
0: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
5: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
6: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
7: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।

0: विच बिकम्स गुड फॉर अस गुड फॉर द वर्ल्ड।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
4: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में 2 सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क

0: संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आहुन सुनदिया प्रोग्राम रंगली धरती च सुरेश कुमार सहदेव ते उन्हां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के नाल नाल विश्वास अते साइबर सुरक्षा आलमी सैमी कंडक्टर मूल लड़ी विच तेजी नाल महत्वपूर्ण होंदे जा रहे ने। भारत अते कैनेडा ने एक व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते लई गलबात तेज कर दिती है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अज कॉकरेज जनता पार्टी के आगुआं सौरव दास अते आशुतोष रंका नूं 5 दिनों की न्यायिक हिरासत विच भेज दिता है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर द्वारा इलाके विच बीती रात गंगा नदी विच एक किश्ती पलटन नाल 13 लोगों की मौत हो गई। भारत विच 2015 अते 2024 दरमियान टीबी के नवे केसा च 21% की कमी दर्ज की गई है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उन्होंने सरकार पंजाब की सिक्ख्या प्रणाली नू बदल रही है और नौजवानों नू मजबूत बनाने रुजगार के मौके पैदा कर रही है। पंजाब के व्यापार से

उन्नत मंत्री अमन अरोड़ा ने हवाई फौज के सबका मुखी एयर चीफ मार्शल BS धनोआ सेवा मुक्त नाल चंडीगढ़ विखे नौवी CII मैनुफैक्चरिंग एक्सीलेंस नुमाइश का उद्घाटन किया। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर वर्जित वालिया ने 24 अक्तूबर नू भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे प्रगट उत्सव के संबंध में शहर में कढ़ी जाने वाली शोभा यात्रा के रूट और 26 अक्तूबर नू प्रगट उत्सव नाल संबंधित धार्मिक समारोह के स्थाना नेड़े मांस और शराब की विक्री से पाबंदी ला दी है। तो भारत और वैसट इंडीज़ विचकार पंज मैचों की 2020 लड़ी का चौथा मैच आज शामी हैदराबाद च खेडिया जाएगा। ए सन हुण तक दियां मुख चोणवीआं खबरां। DTS दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। पेश है प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। ते इस प्रोग्राम दी शुरुआत करदियां इस प्यारे जिहे गीत दे नाल। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। ते इस प्रोग्राम विच शामिल होण दे लई तुसी सानू खत लिख दिओ। खत दा पता एक बार फिर नोट कर लो। एक बार फिर इसलिए गया क्योंकि रोज़ दे रोज़ तुहानू दस्या जांदा है ते जिहड़े दोस्त नवे बणदे ने उहनां नू दस्स दिए कि इस प्रोग्राम विच तुसी खतां दे आधार ते लिखे हुए गीत सुनदे हो ते इस खतां दे आधार ते तुसी इस प्रोग्राम विच शामिल हुंदे हो। प्रोग्राम दा नां है चिट्ठियां मिठियां। आकाशवाणी जलंधर मार्फत स्टेशन डायरैक्टर पिन कोड 144001। इस नूं लिख के दूजे पासे तुसी अपना जगह दा नां अपना नां ते गीत दे बोल लिख के सानूं भेज दिओ। इह छोटा जिहा काम करके तुसी पहुँच सकदे हो इस प्रोग्राम विच। फिलहाल इस प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां एक प्यारे जिहे गीत दे नाल ते सुणदे हां जी इस गीत नूं। उस तों बाद तुहाडे खतां नूं शामिल कीता जाएगा।

इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तुसी खत लिख दियो रोज़ दे रोज़ जो है कीमती समा कट के। तो लो जी लिखे है सानू खत सहारनपुर तो सुरेश नारंग ते आशा नारंग छत्तीसगढ़ तो लिख रहे ने भागवत वर्मा गुलाबदास मानिकपुरी लच्छनपुर तो विश्वनाथ साहू ते दुर्गा राम साहू पेंड कुबाया तो लिख रहे ने पप्पू मनीष अमरोबाई राजू फौजी हरप्रीत कौर बलजीत कौर हरमेश पोतरे गुरनूर प्रनीत परी नवदीप बबलू ते माणो। चालकला नवांशहर तो लिख रहे ने सानू अमरजीत बंगा परमिंदर राजा कुलविंदर कौर ते सारा अंबा परिवार। गुरु गोबिंद सिंह नगर पूछू कैंचियां तो लिख रहे ने प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन कुलदीप एकम दमन ते अभिजोत। ते इन्हां सारों नूं सुना रहे हैं मास्टर सलीम की आवाज़ में प्यारा जगीत है सुनदे हां। तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। तो लो जी अगली चिट्ठियां आवाज़ा मार रही ने। लिख रहे ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साहब राही ते महाराज जहां। हाजीपुर तो लिख रहे ने टोनी।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अपनी दोस्त कृतिका कौशल दे नाल। ते लो जी चिट्ठियां पहुंच चुकियां ने, लिख रहे ने सानू टालीवाला जट्टा तों साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, मनजीत ते परवीन। लिख रहे ने सानू मलौट तों जगतार गिल, परमजीत कौर, गैवी गिल ते अमन। बुरज सिदमा मलौट तों सरबजोत सिद्धू, अविताज, जगतार ते सारा परिवार। पटेल नगर मलौट तों डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता राणी, गगनदीप ते बेबी आरजू। नाभा तों लिख रहे ने सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरमंत। लिख रहे ने सानू छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी तों किशोर, दीपक ते सारा परिवार। ते इन्हां सारयां नूं सुना रहे हां सतिंदर परदेसी दी आवाज़ विच। एह गीत है, तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। लिख रहे ने अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, बेबी गव्या ते सारा परिवार सुनना चाहते ने जस्सी सिद्धू की आवाज़ में कोई भी गीत। कनेरा मौला पटियाला तो लिख रहे ने मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन पलक, करण, गीतू, हार्दिक निहारिका ते वंश बत्ता। मोहला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन कपूर, गुंजन, लालसा, रमा, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोद, पाली, डीसी पुरी, अरुण, नेहा, एकता, शम्मी, बोधी, सुनील, वीके पुरी, आरएस पुरी ते सारा परिवार। लिख रहे ने सानू मलौट तो महेश गर्ग, सुषमा गर्ग ते जशन गर्ग, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांदा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांदा ते कोई भी गीत सुनना चाहते ने सुनाने जी। तुहानू जसू जस्सी सिद्धू दी आवाज़ विच गीत है सुनदे हां।

चल रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लिख रहे ने मसीता डबवाली तो दर्शन लौट गुरनूर इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लौट मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत प्रणीता अर्जुन ते सारा परिवार आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो वैशैली शैलेश सुमित ते ध्वनि अमरगढ़ तहसील साधुल शहर तो लिख रहे ने कुलवंत मान लखविंदर कौर खुशप्रीत कौर गुरनूर हरविंदर राजा सिंह कुलविंदर कौर ते के एस मान मॉडल टाउन करनाल तो लिख रहे ने सुधीर नूतन संदीप सुनीता बिपाशा ते सारा परिवार मंडी गुलवाला राजस्थान तो ब्रिजलाल चौहान ते नीरज कुमार चौहान पिंड कुनाणा जिला फजलका तो लिख रहे ने मलकीत सिंह मनजीत कौर दुपिंदर पोता गुरशबद जीत सिंह दर्शन सिंह ते सारा परिवार ते इन्हां सारे नूं सुना रहे प्यारे जगीत डॉली सिंह दी आवाज़ विच।

चल रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। ते लो जी, चिट्ठियां पहुंच चुकियां ने ढेर सारियां, ते पढ़दे आं। ज़िला फजलका तो लिख रहे ने कुलदीप सिंह, कुलमीत कौर, चरणप्रीत सिंह सिद्धू, यादविंदर ते सारा परिवार। बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय, नमन, अपार ते सारा परिवार। ज़िला फजलका तो लिख रहे ने पप्पू, मुनीश, अमरो ते सारा परिवार। लिख रहे ने सानू मखू फिरोजपुर तो। बिला बजाज हैप्पी कपूर ते मुनीश बजाज। ज़िला मोगा तो लक्ष्मण सिंह, वीरू, लखविंदर ते काली ते सारा परिवार। ते सारे तो गुजारिश है कि जब भी तुसी खत लिखते हो तां साफ साफ हैंडराइटिंग विच लिख के भेजा करो ताकि पढ़न च आसानी हो जाए। लिख रहे ने सानू हनुमानगढ़ फाजिलका तो, सानू खत लिख रहे ने अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते सारा वर्मा परिवार। जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल, नवनीत ते पप्पी पाटिया। मलौट तो नानक चंद, बंटी कुमार, विजय कुमार ते सारा परिवार। इन्हां सारयां नूं सुना रहे हां मिक्की नरोला दी आवाज़ विच। गीत है

मांगी, अपना ख्याल रखियो। अगला प्रोग्राम तुसी सुनोगे प्राइमरी चैनल तों।

0: प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं फिल्म अभिनेत्री दा। इस गीत नू आवाज दी है किशोर कुमार ते लता मंगेशकर ने।
1: हसो मत बोलो।

तुसी सुन रहे सी सदाबहार गीत मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 4:30 वज रहे ने। आओ हुण असी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करदे हां।

तुसें सरमनकारे सी श्री दरबार साहब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 854 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आप हुण सरवण करदे हां साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार।

सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विचो जाए। ए फरमान सच्चे गुरु दी सेवा करन नाल प्राप्त हुए लाभ बारे दर्शाउंदा है। होर भी फरमान है कि सच्चे गुरु दी सेवा कीत्या हर प्रकार दे फल दी प्राप्ति हुंदी है। हिरदे नु लगी जन्मा जन्मांतरां दी मैल भी मिट जांदी है, दूर हो जांदी है, क्योंकि उस प्रभु दा नाम पतिता नु भी पावन कर दिंदा है। सतगुर सेव सर्ब फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। इस शब्द दा गायन कीता है भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दातार दा किन्ना वड्डा गुण है कि आप ही सृष्टि नू पैदा करके उस दे संचालन दी प्रतिपालना करन दी सेवा भी कर रहा है। भगत कबीर जी दे बचना विच ओ अकाल पुरख प्रभु प्यारियां ते ऐसी कृपा करदा है कि उन्हां नूं सेवक बना लैंदा है ते उस दे सेवक भी कुल खलकत दी सेवा विच आनंद महसूस करदे हन। अकाल पुरख आप जीवां नूं जीवन मुक्त कर दिंदा है ते उस दे प्यारे संत उस अकाल पुरख प्रभु दा नाम प्राणियां पासों जपाउंदे हन। कबीर सेवा को दोए पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। सुनदियां हरविंदर सिंह वीर होरा पासों वार्ता, कबीर सेवा को दोए पले, एक संत एक राम।
1: संसार विच विचरदियां अनेकां सज्जन गुरमुख जन अते सेवा नूं समर्पित प्यार करन वाले इंसान अक्सर सानू मिलदे हन जिन्हां दा सारा जीवन दूसरां लई ही बीतदा है। भाव के उन्हां ने भला ही करना है पर उपकार ही करना है। वह अपना जीवन तां भली पांत बताउंदे ही हन परंतु दूसरां दा जीवन भी सवार दे जांदे हन। ऐसे प्यार करन वालियां नूं गुरमत दे पंधी आख्या जा सकदा है अते उन्हां दी जिंदगी दा मुख मंतव ही भला करना है पर उपकार करना है। समुची मनुखता नूं कुलावे विच लै के प्यार वंडना है। जो ऐसे परउपकार दे कारज कर जांदे हन वह जन्म मरण तों उपर उठ जांदे हन, अमर हो जांदे हन। ऐसियां रूहां नूं

सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु दे सच्चे सेवक अकाल पुरख दे चरना विच नेता प्रति अरदास बेंतियां करदे ही रहंदे हन ते उस प्रभु दे सोने चरना दा जाप करदे रहंदे हन। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द दा गायन कीता है भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उना दे

सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द गायन की तासी पाई प्रभजोत सिंह बाली ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: हुण तुसीं सर्वण कर रहे सी साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, समय समय इसको सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 854 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शुरू करिए इन्वेस्टमेंट दा सब।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, सीडीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 6:20 मिनट हो रहे ने। हुण तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: जागरूकता पहल। और जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जंजल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। केंद्रीय वातावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब ते हरियाणा च पराली साड़न नूं रोकण लई जमीनी पद्धर ते निगरानी ते कारवाई नूं तेज़ करन दी जरूरत ते जोर दित्ता है। मानसा विच नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह झोटा दा कथित कातल गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिता इस विच शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा। BSF ने तरन तारण की ड्रोन विरोधी टीम च तैनात पंजाब पुलिस के कॉन्सटेबल तो 15 किलो तो वध हैरोइन जब्त की। पंजाब कर विभाग वालों 429 करोड़ रुपए के GST तो खतड़ी नैटवर्क का पर्दाफाश। लुधियाना च एक ट्रांसपोर्टर अते उसके दो साथियों खिलाफ मामला दर्ज। ते भारत वैसटइंडीज़ दरमियान 5 मैचों की 2020 लड़ी का 4th मैच अज हैदराबाद च शामी 7 बजे खेडिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बीते दिन नवी दिल्ली च एक उच्च पद्धरी अंतर मंत्रालय समीक्षा मीटिंग की थी तां जो यह यकीनी बनाया जा सके कि मौजूदा झोने के वाढ़ी सीजन दौरान पराली प्रबंधन पूरी तरह कार्यशील रहे। इस मीटिंग की सह प्रधानगी केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ते वातावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। दोवां केंद्रीय मंत्रियों ने जिक्र किया कि झोने के वाढ़ी ते हाड़ी दीआं फसलां दी बिजाई दरमियान बहुत घट समा बचा है, इसलिए प्रशासनिक मशीनरी नूं सिर्फ कागजी कार्रवाई ते नहीं सगों जमीनी पद्धर ते भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए है। उन्हां जिला पद्धर ते जिला मजिस्ट्रेटां नाल तुरंत मीटिंगां करन ते नेड़ों निगरानी नाल विहारक हल यकीनी बनाउण दे निर्देश दित्ते। इस मौके वातावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पराली साड़न नूं रोकण लई जमीनी पद्धर ते निगरानी ते कार्रवाई नूं तेज़ करन दी जरूरत ते जोर दित्ता। उन्हां ने पंजाब दे संगरूर, तरन तारण, अमृतसर, पटियाला ते गुरदासपुर जिलों अते हरियाणा दे कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला ते फतेहाबाद जिलों च विशेष निगरानी करन लई कहा है। इसका उद्देश फसल की स्थिति का मुलांकन करना ते पराली साड़न दीआं संभावी घटनावां दा अनुमान लगाना है। मीटिंग च श्री चौहान ने कहा कि किसानों को आसान, पहुंचयोग ते किफायती पराली प्रबंधन बदल प्रदान किए जाने चाहिए ने। मानसा विच नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह झोटा का गोली मार के कतल करन तो एक दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिता है कि नशा विरोधी कारकुन की इस दिन दिहाड़े हुए कतल च शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा।
2: मानसा दे विच बहुत मंदभागी घटना हुई है जिदे विच सोशल वर्कर परविंदर सिंह झोटा उन्हूं गोली मार के कतल कर दिता गया। इस मामले दे विच मैं स्पष्ट करना चाहना कि पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी, दोषियों नूं सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। वैसे तो मुख्य दोषी नूं फड़ लिया गया पर जे कोई साजिश भी हुई उहदे पिछे कोई होर बंदे होए उन्हां नूं भी बख्शा नहीं जाऊगा। मैं परविंदर सिंह झोटा दे परिवार नाल हमदर्दी भी प्रगट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा ओ दुनिया तो चला गया, पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए सी। पर जो भी कमियां भावे जिस पद्धर से मर्जी होवे मैं DGP साहब नूं सख्त निर्देश दिते ने कि इहदी जिहड़ी है पूरी जांच पड़ताल की जाए।
1: पुलिस ने बीती देर रात राजस्थान तो मुख मुलजम कैमिस्ट अश्विनी कुमार नूं गिरफ्तार कर लिया ते जिला प्रशासन ने अज उसका घर ढा दिता। इस कतल के विरोध विच धरने ते बैठे लोगों समेत गुस्से च आई भीड़ ने उसकी कैमिस्ट की दुकान ते भी भनतोड़ की। कानून व्यवस्था बनाई रखने की वड्डी गिनती विच पुलिस मुलाजमान नूं तैनात किया गया। इस दौरान कांग्रेस ते श्रोमणी अकाली दल समेत वक्खो वक्ख राजनीतिक पार्टियां ने इस कतल ते सूबे च विगड़ती कानून व्यवस्था की निंदा की है। BJP दे सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सूबे च आम आदमी पार्टी की सरकार नूं कानून की घाट लई जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजमान समेत बेकसूर लोगों के कतल दी घटनावां हर रोज़ सामने आ रही ने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृह विभाग का चार्ज भी संभाल रहे ने पर फिर भी गैंगस्टर खुले घूम रहे ने ते हर पासे नशे वेख रहे ने। उन्होंने कहा कि हाल ही 6 पुलिस कर्मचारी मारे गए ने, कई पुलिस थाणियां ते हमले हुए ने, 2 राजनीतिक नेतावां ते भी हमले हुए ने। उन्होंने कहा
3: इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आम आदमी पार्टी की सरकार। इसके हत्या के बाद उसके पिता ने जो कहा है वो उससे भी बढ़कर है कि इसके लिए हम जो लोकल MLA है उसकी सह पे ये हो रहा है। तो मैंने तुरंत अपने माननीय गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखा और हमें पंजाब की सरकार पे, पंजाब की पुलिस पे, पंजाब के किसी पे कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं होता। इसलिए हमने बोला कि इस ये सारी जो केस हुआ है

0: से सुनूंगी रात 8:03। नमस्कार।
1: ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो की कड़ी ते 6:03 हो रहे हैं। लो हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: मैं क्या प्रिंसिपल साहब जी घरे ही हो।
1: लांग आइए
2: आजो आजो बच्चियां वाले हो आजो जी
1: आगे
2: आजो।
1: जी आगे जी आगे, जय हिंद कबूल करो।
2: जय हिंद जी जय हिंद।
1: मैं क्या बढ़िया खबरां पढ़ी जाने हो, वे कोई सानू भी कोई गुर ज्ञान की गल दस दिया करो।
2: तुसी भी अखबार पढ़ो, टीवी च खबरां देखो, जानकारी मिलती है। ते जानकारी दे नाल ही तुहाडी नॉलेज भी वधदी है ते दुनियादारी दी समझ
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: बचना कितना है, की करना है ते की नहीं करना।
1: देखो पढ़े लिखे बंदे दे कोल आउण दा ना यही फायदा हुंदा कि दो चार गल्लां ज्ञान दियां पता लग जांदियां।
2: बिल्कुल जी। ते अज 14 अक्तूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे,
1: क्या बात है।
2: अखबारां पढ़ो ते पता भी लग जांदा वे। विश्व मानक दिवस 1970 तो मनाना शुरू होया।
1: अच्छा जी।
2: तुहाडे वर्गे साडे वर्गे सारे लोगों नूं जागरूक करन लई कि वस्तां ते व्यापार बारे सही की है ते गलत की है।
1: गलत सही है भाई।
2: पिछले दिनी तुसी शिकायत कर रहे सीगे कि प्रेस
1: हाँ।
2: लैके आंदी है।
1: कार टुट गई, वो लियांदी हले माड़ी जी लाई है आप, भरजाई तुहाडी माड़ी जी ऐ करन लगी प्रेस, वो नाल ही एक तार जिहड़ी है बुड़क के उहनूं झटका लग्गिया, खरे टुट गई, बच गई विचारी किते।
2: ये सारिया चीजा स्टैंडर्ड, हर चीज का स्टैंडर्ड मिथन लई वर्ल्ड लैवल ते ये दिन मनाया जाता है।
1: क्या बात है।
2: खान पीन की वस्ता होन, इस्तेमाल वालिया होन, उन्हां दा पैमाना की होना चाहिए वे, की स्टैंडर्ड होने चाहिए। अगर प्रेस की गल करिए जिहड़ी तुसी कह रहे हो कि खराब हो गई, उन्दे विच किन्नी गेज की तार पैनी चाहिए है, कोयल केड़ी होनी चाहिए है, मटीरियल केड़ा होना चाहिए है, खान पीन की अगर गल करिए केड़ा तेल इस्तेमाल होना चाहिए है, केड़ा नमक होना चाहिए है, त्योहारा दे दिन ने खोया केदा दा होना चाहिए है।
1: मैं देखे जेडे तुहाडे वर्गे पाड़ू हैगे आ ना, वो तो बिस्कुटा का पैकेट भी लैन जाते हैं तो ऐनक ला ला के उत्तों पढ़ते हैं सारा भी की लिखा। मैं एक बार देखा, मैं क्या इतने कोई ऐसे लिखे भी पता नहीं बड़ी देर का यह मुंडा पढ़ी जाता पाया।
2: इस दिन इस सारिया चीजा के स्टैंडर्ड फिक्स किए गए।
1: अच्छा।
2: कि खान पीन वाली चीज के उत्ते लिखा होना चाहिए है किन्नी कैलरी मिलेगी, केड़ा केड़ी इन्हें समान पिया पिया या नहीं पिया।
1: अच्छा जी।
2: ते सेहत लई केड़ा चंगा ते केड़ा।
1: बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल।
2: ते इस बारे भारतीय मानक ब्यूरो दे उप महानिदेशक दीपक कुमार सिंगला दा इस दिन यानी विश्व मानक दिवस ते सुनेहा है।
1: अच्छा जी।
2: सुनाने हैं।
1: सुनाओ जी।
3: नमस्कार। आज का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विश्व मानक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाना तथा मानकों के विकास में योगदान देने वाले विश्व भर के हजारों विशेषज्ञों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस किसी एक खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण और विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स

0: की प्राप्ति में मानक क्यों महत्वपूर्ण है? सरल शब्दों में इसका उत्तर है कि मानक केवल तकनीकी दस्तावेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता और विश्वास की एक साझा भाषा, कॉमन लैंग्वेज ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड ट्रस्ट हैं और सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानक गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए मापनीय मानदंड, मेजरेबल बेंचमार्क्स निर्धारित करते हैं। प्रत्येक मानक के पीछे एक व्यापक पब्लिक पर्पस होता है, जैसे कि विद्युत उपकरणों के लिए मानक किसी परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। निर्माण सामग्री के लिए मानक हमारे बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करते हैं। ऊर्जा दक्ष उत्पादों के लिए मानक ऊर्जा की कम खपत, कम लागत और बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए मानक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य मानकों का निर्धारण करना है। मानक निर्धारण के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स का भी संचालन करता है, जैसे कि ISI मार्किंग स्कीम, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT प्रोडक्ट्स, सोने और चांदी के आभूषणों के लिए हाल मार्किंग स्कीम। यद्यपि भारतीय मानकों का अनुपालन जनरली स्वैच्छिक है, हालांकि कई ऐसे उत्पाद भी हैं जिन पर लोगों के हितों और सुरक्षा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय मानकों का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCOs क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी करके अनिवार्य किया गया है। अब तक भारत सरकार द्वारा 720 से अधिक उत्पादों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं। विश्व मानक दिवस का उद्देश्य केवल एक दिवस मनाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि सही अर्थों में हमारा उद्देश्य इस अवसर पर उद्योग जगत, उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, रेगुलेटरी बॉडीज, अकेडमिया, R&D इंस्टीट्यूशंस तथा अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना भी है। इसके माध्यम से हम गुणवत्ता की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था के निर्माण में मानकों की भूमिका के प्रति साझे दृष्टिकोण, शेयर्ड विजन को और अधिक सुदृढ़ भी करना चाहते हैं। विश्व मानक दिवस 2026 मनाते हुए हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसी एक संस्था और व्यक्ति मात्र की नहीं है। इस व्यवस्था में प्रत्येक हितधारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इस विश्व मानक दिवस पर हम सभी बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, विषय के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनर्दोहराएं और एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य करने का संकल्प लें। आप सभी को विश्व मानक दिवस 2026 की पुनर् बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हाँ जी, क्या बात है जी। ते दुध बहुत चाहिदा हुंदा लवेरियां तो, पशुआं तो, चांदे असी हां खुराक दईए, सांभ संभाल रखीए,
2: बिल्कुल।
1: पर इस दे नाल नाल पशुआं नूं बाहरी परजीवियां तो बड़ा नुकसान हुंदा।
2: बे जे पशु ही बीमार हो गया ते फिर दुध दी आस कित्थों रहू?
1: बाहरी परजीवियां नाल पशुआं च होण वाले नुकसान, ये वार्ता सुनाने आ डॉक्टर हरकीरत सिंह दी।
3: पशु पालक वीरो, आप सब नूं मेरे वल्लों डॉक्टर हरकीरत सिंह, प्रोफेसर पशु परजीवी विज्ञान विभाग, गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंसिज यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज दा जेड़ा अपना विशा है वह यह है कि बाहरी परजीवियां नाल पशुआं नूं होण वाले नुकसान। सो सब तो पहला आपां इह गल समझीए कि किसी भी किते नूं शुरू करन लई ते उत्तों मुनाफा कमाउण दे लई पशुआं दा रोग मुक्त होना बहुत जरूरी है।

ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं

0: सोनू सूद।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर का किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर के डी जोशी जो है एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे बड़ी कोस्टलाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्टलाइंस है वहां पर भी सफल रहा है?
3: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउस कह लीजिए, रहेंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास, एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे यहाँ मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कॉमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए, व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो। ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है, और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी।

0: और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित है और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं। अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA मिलियन टन पर एनम था और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
2: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है तो पहले तीन दिन में होता था, अभी एक दिन में तीन जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता तीन दिन में, तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 times हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में। एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये 3 पोर्ट टॉप 13 में भारत के हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल, इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
0: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके

0: लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबर जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक है, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इस सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
2: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से जब ये दुनिया में जब इनका हुतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे, सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेंस को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और हमारे जहाज कंटिन्यूसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे, तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है, दोनों का पैरेलल विकास दिया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का?
0: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो, और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है, वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो

0: रोड परिवहन हो या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज है के विकास क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में, और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहे कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
0: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका, और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवेज वन की बात हो रही है जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलाइन वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलाइन वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलाइन वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
1: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको, ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जांपल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे।

0: जहाजों में,
1: जी
0: और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा, या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विरिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है त्रिवेंद्रम में,
1: जी
0: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो सुएज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विरिंगम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो
1: जी
0: ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है, और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका, वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्वेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज 2 और फेज 3 खत्म होएगा 2028 तक,
1: जी
0: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEU का होने का उद्देश्य है इस बात का।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर केडी जोशी, डिफेंस एनालिस्ट, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर काठा के तमाम जो जिले हैं, जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना की संकल्पना की गई, और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक,
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है

0: दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहाँ बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
2: जी सुनो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरिटाइम जो हेरिटेज है उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा, लोगों के लिए वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
0: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5,000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं, तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5,000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृत काल विजन भी 2047 उसको भी सरकार

0: ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ, कितना आपको ये अप्रोच कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
1: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
0: जी,
1: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है
0: जी।
1: और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी और अल्जिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई है। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर वडोदरा तक। तो अभी आप देखिए कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है, बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है, और ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
0: बिल्कुल
1: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की वो एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में, और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें महाराष्ट्र में जो बन रहा है वो एक और पोर्ट है, गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा, जो अंडमान में बना रही है, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से
0: जी।
1: तो आप देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे पूरी देश की पूरी जो लैंडमास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की सब जगह कहीं ना कहीं मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है
0: जी। बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए
2: धन्यवाद
1: जी। शुक्रिया।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर KD जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTS दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेबसाइट राही भी सुन सकते हो। लाउन पेश है हिंदी वार्ता प्रोग्राम जिसका विषय है भारतीय संस्कृति में शारदीय नवरात्रे। वार्ताकार ने रजेश आदिया।

भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक पर्व केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि जीवन मूल्यों, नैतिक आदर्शों और आत्मिक उत्थान का एक माध्यम होता है। आज की वार्ता में हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जो भारतवर्ष में ना केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है, यानी शारदीय नवरात्रि। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातों का समय। इन नौ रातों और 10 दिनों के दौरान वीरता, भक्ति, अनुशासन और दिव्य शक्ति के प्रतिरूप देवी माँ की पूजा की जाती है। एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीने में। इनमें से चैत्र और अश्विन की नवरात्रियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि की। यह नवरात्रि शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर महीने में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव नहीं, अपितु यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्तों के स्वयं के अंदर झांकने और सुधारने का अवसर देती है। शारदीय नवरात्रि का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व अत्यंत गूढ़ है। पुराणों के अनुसार इस त्यौहार के पीछे मुख्य कहानी देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध की है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने धरती और स्वर्ग में उत्पात मचा रखा था, जिससे समस्त देवता और मानव परेशान हो गए। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे कोई मनुष्य, देवता या असुर मार नहीं सकता था। इस प्रकार महिषासुर समस्त शक्तियों के सक्षम अजय था। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वह अहंकारी हो गया और उसने त्रिलोक में कहर बरपाना शुरू कर दिया। समस्त देवता दुष्ट राक्षस को हराने में असमर्थ थे, इसलिए सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास मदद के लिए गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के तेज से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। देवी दुर्गा स्त्री शक्ति और शक्ति के अंतिम अवतार के रूप में उभरी। हिमालय ने देवी को अपना वाहन सिंह प्रदान किया। सभी देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हो गई और देवी ने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया, जो कि 9 दिनों तक चला। 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल के प्रहार से दुष्ट महिषासुर का वध कर दिया। जिस दिन देवी ने महिषासुर का वध किया वह दिन विजयादशमी कहलाया। विजयादशमी केवल महिषासुर मर्दिनी की विजय का दिन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में इसे धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। यही दिन श्री राम की रावण पर विजय का भी प्रतीक बन गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी दुर्गा के एक रूप की पूजा होती है। जैसे देवी का पहला रूप शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, जो कि विनम्रता और धैर्य की प्रतीक है। दूसरा ब्रह्मचारिणी, जो कि तपस्या, संयम और साधना की प्रतीक है। तीसरा चंद्रघंटा, जो कि साहस, सौंदर्य और शौर्य की प्रतीक है। चौथा कुष्मांडा, जो कि सृष्टि की रचनात्मक शक्ति और प्रकाश की प्रतीक है। पांचवा स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। छठी कात्यायनी, वीरता और निर्णय शक्ति की प्रतीक है। सातवीं कालरात्रि, अंधकार और भय का विनाश की प्रतीक है। आठवीं महागौरी, शांति, शुद्धता और पारदर्शिता की प्रतीक है। नौवीं माँ सिद्धिदात्री, आत्मिक विजय की प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि का एक और ऐतिहासिक पहलू यह है कि वैदिक काल से लेकर यह पर्व नारी शक्ति के सम्मान और उसके पूजन का पर्व बन चुका है। ऋग्वेद से लेकर देवी महात्म्य तक भारत की परंपरा में नारी को केवल पूज्या ही नहीं, अपितु सृष्टि, शक्ति और सृजन की मूलाधार माना गया है। नवरात्रि में जब हम कन्या पूजन करते हैं तो वह इसी बात का प्रमाण है कि एक कन्या भी स्वयं माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। नवरात्रि में पूजा विधि, भोग, वेशभूषा, मंत्र, आरती आदि परंपरागत तरीके से होते हैं। जैसे पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना होती है। इस अवसर पर किसी कलश या पात्र में जल, मिट्टी, फूल आदि रखकर देवी को निमंत्रित किया जाता है। हर दिन एक नया रूप, एक नई शिक्षा और जीवन को संवारने वाला नया संदेश लेकर आता है। यह क्रम हमें प्रतीकात्मक रूप से यह सिखाता है कि कैसे साधक तमोगुण से रजोगुण

0: और अंततः सतोगुण की ओर अग्रसर हो सकता है। यह आत्मा की उस यात्रा की कथा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है। नवरात्रि में भक्त उपवास रखते हैं, संयम और अनुशासन अपनाते हैं। इसमें आहार सीमित हो जाता है, मांस, अंडा, कभी कभी अनाज, प्याज, लहसुन आदि से परहेज किया जाता है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। प्राय आस पड़ोस की छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भक्त उन्हें देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोते हैं और उन्हें प्रसाद रूप में पूड़ी, हलवा, माँ की लाल चंदरिया भेंट करते हैं। यह स्त्री शक्ति और मातृ आदर्श की स्तुति है। नवरात्रि में भक्तजन आरती एवं प्रसाद के साथ देवी माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। आराधना के दौरान दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य आदि ग्रंथों का पाठ होता है। भजन कीर्तन और भगवती जागरण मध्य रात्रि और सुबह तक चलता है। शारदीय नवरात्रि केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं अपितु यह भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी उत्सव है। उत्तर भारत में नवरात्रि के दिनों में श्री राम लीलाओं का भव्य आयोजन किया जाता है, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित राम कथा का मंचन किया जाता है। इनके अतिरिक्त दशहरा पर्व और माँ दुर्गा की पूजा का उत्सव भी मनाया जाता है। इसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया की धुनों पर पूरा समाज एक साथ नाचता है, जहाँ आराधना और आनंद का अनूठा संगम दिखाई देता है। पश्चिमी बंगाल, असम और ओडिशा में दुर्गा पूजा एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन बन चुकी है, जहाँ देवी की मूर्तियाँ, पंडालों की सजावट और सामूहिक आरती एक धार्मिक अनुभूति से कहीं अधिक एक जीवंत लोक महोत्सव बन जाती है। दक्षिण भारत में बोमे गोलू की परंपरा है, जहाँ घरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ सजाई जाती हैं और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है। नवरात्रि में लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं, मेले लगते हैं, समूहों में गाना बजाना होता है, भोजन बांटा जाता है, गाँवों शहरों में गरीबी समृद्धि के भेद मिट जाते हैं। आधुनिक समय में बढ़ रही पर्यावरण संरक्षण की प्रवृत्ति का असर नवरात्रि के आयोजनों में भी दिखाई देता है। लोग अब मिट्टी की मूर्तियां बनवाते हैं, अधिकतर सजावट प्राकृतिक सामग्री से करते हैं। पंडाल थीम बहुत रचनात्मक हो चले हैं, सामाजिक मुद्दों पर आधारित, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्र प्रेम आदि विषयों पर आधारित पंडाल तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी आजकल इसे पर्यटन पर्व के रूप में प्रमोट कर रही हैं। कई स्थानों पर उत्सव बड़े मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित होते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। इससे हस्तशिल्प, कपड़ा, कला आदि को बढ़ावा मिलता है। शारदीय नवरात्रि में हमें कई प्रकार के संदेश भी मिलते हैं, जैसे कि आत्मशक्ति। जीवन में संघर्ष आए तो डटकर सामना करना सीखें। माँ दुर्गा की कथा हमें यही सिखाती है कि अच्छाई में ही शक्ति है। इसके अतिरिक्त नारी सम्मान का संदेश मिलता है कि नारी किसी मातृत्व या स्नेह की देवी नहीं, बल्कि वह शक्ति है, नेतृत्व है, साहस है। इसके साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों की पुनः स्थापना का भी संदेश मिलता है कि सत्य, न्याय, करुणा और समर्पण सिर्फ पूजा में ही नहीं अपितु अपने कर्मों में भी जरूरी है। जब हम शारदीय नवरात्रि की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि यह केवल पर्व नहीं है, यह जीवित परंपरा, संस्कार, शक्ति का आह्वान और आत्मिक उन्नति की यात्रा है। इतिहास, साहित्य, संस्कृति, कला, धर्म, सामाजिक समरसता और आधुनिकता सब इस महोत्सव के रंग हैं। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि अज्ञान, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध आदि हमारे भीतर के महिषासुर हैं और उन्हें परास्त करने के लिए हमें अपने अंदर की दुर्गा को जगाना होगा। जब यह जागृत होगी तो विजयादशमी वास्तविक रूप से आत्मा की विजय बनेगी। अंत में यही कामना है कि माँ दुर्गा सभी को शक्ति, करुणा, संतोष और आशीर्वाद प्रदान करे, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके मन में श्रद्धा जगमगाए और जीवन सच्चाई और न्याय पथ पर अग्रसर हो।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी हिंदी वार्ता। भारतीय संस्कृति में शारदीय नवरात्रे। वार्ताकार सन राजेश आदिया।

मीडियम वेव 343 शहर 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, टीआरएम 854 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स और डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो की घड़ी ते 8:30 हो रहे हैं। हुण तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां।

0: गई है। आज नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई कैबिनेट मीटिंग तो बाद सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दसिया कि हरेक योग मुलाजम नू वध तो वध 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने भी दसिया कि रेलवे अंदर एक विशाल भर्ती मुहिम चल रही है जिस विच करीब 1,65,000 असामियों लिए भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2026-27 तो 2030-31 तक 5 साल की म्याद लिए राष्ट्रीय समाजिक सहायता प्रोग्राम नू जारी रखने नू भी प्रवानगी दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया।
0: उन्हें कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना तहत हूँ 79 साल तक की उम्र समूह लिए सहायता रकम 375 रुपए, 80 साल इस तो उम्र समूह लिए 625 रुपए होगी। उन्हें भी कहा कि बुजुर्गों ते विधवावां लिए पेंशन स्कीमा ते परिवारक लाभ स्कीमा अपने मौजूदा रूप में जारी रहन किया। श्री वैष्णव ने भी दसिया कि IDBI बैंक के पुनर्गठन नु भी प्रवानगी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा कि भारत कैनेडा नाल एक अजिही उसारू ते अगावधू रणनीतिक भाईवाली बनाउण लई वचनबद्ध है जो दोवां देशां दे लोकां नू ठोस लाभ प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने नवी दिल्ली विच कैनेडा दे विदेश मंत्री अनीता आनंद नाल मुलाकात की थी अते दवल्ले संबंधां नू मजबूत करन लई चल रहे यत्नां ते चर्चा की थी। उन्होंने व्यापार, तकनालोजी, सुरक्षा, ऊर्जा, सिक्ख्या ते लोकां तों लोकां दे वटांदरे दे खेतरां विच भारत कैनेडा संबंधां नू होर डूंगा करन ते चर्चा की थी। श्री मोदी ने दवल्ले संबंधां विच गति नू कायम रखण अते इस नू ठोस नतीजियां विच बदलण दी महत्ता ते जोर दिता, जिस विच एक व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते CEPA ते गलबात दे जल्दी सिट्टे शामिल ने। उन्होंने आपसी हित दियां खेतरी अते आलमी गतिविधियां ते भी विचार वटांदरा कीता। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर अते कैनेडा दे विदेश मंत्री अनीता आनंद ने अज व्यापार ते निवेश, सिक्ख्या, ऊर्जा, रक्षा अते लोकां तों लोकां दे वटांदरे वर्गे खेतरां विच भारत कैनेडा संबंधां विच प्रगति दी समीक्षा की थी। दोवें मंत्रियों ने अज नवी दिल्ली विच मुलाकात की थी। भारत ने अज साउदी अरब नाल इकजुटता प्रगट की थी अते पश्चिमी एशियाई देशां विच होए हमलियां दी सख्त निखेधी की थी। साउदी अरब दी तेल कंपनी अरामको दे मुख दफ्तर ते होए हमले बारे विदेश मंत्रालय दे बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे ते अजिहे सारे हमलियां दी निखेधी करदा है। उन्होंने कहा कि अजिहे हमले पूरी तरह अस्वीकारन योग ने अते फौरन बंद होने चाहिए ने। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत साउदी अरब के लोगों अते सरकार नाल इकजुटता नाल खड़ा है अते उम्मीद करता है कि खेतर विच शांति अते आम स्थिति बहाल हो जाएगी। साउदी अरब विच भारतीय प्रवासियों की स्थिति बारे श्री जायसवाल ने कहा कि रियाद विच भारतीय दूतघर भारतीय भाईचारे नाल नियमित संपर्क विच है अते सलाह जारी की थी। उन्होंने कहा कि रियाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते हमले तो बाद निर्धारित उड़ाना विच विघन पे है।
2: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है, और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनकी हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
0: भारत ईरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गलबात बारे बुलारे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सोमवार को अपने ईरानी हमरुतबा डॉक्टर मोहसिन रिजाई नाल गल की थी। दुवल्ले मुद्दियां, खेतरी स्थितियां ते अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां ते चर्चा की थी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय नाविकां ते भारतीय टैंकरां दी सुरक्षा नू भी प्रमुखता नाल उठाया गया। श्री जायसवाल ने राजधानी दिल्ली की स्थिति ते संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकारां लई हाई कमिश्नर दे दफ्तर वल्लों हाल ही विच कीतियां गईयां टिप्पणियां नू बेबुनियाद अते अस्वीकारनयोग दस्या। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। पंजाब दे मानसा विच नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह चोटा दा गोली मार के कतल कर दिते जाण तों एक दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिता है कि दिन दहाड़े हुए इस कतल विच शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शिया नहीं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में

0: 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
1: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित रहे हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर

0: बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है। और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनकी हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट चल रही हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
4: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
2: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
1: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर दें।
0: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नवरात्र से अधिक श्रद्धालु और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
3: So I'll read the message of Honorable Prime Minister. I'm pleased to learn that the Ministry of Culture, through the National Center for the Arts, is organizing an international conference in New Delhi on the theme Bharat's Culture Connections Across

0: the globe. I warmly welcome the scholars, researchers, diplomats, and other distinguished participants from India and abroad who are participating in this important conference. For centuries, India's civilizational journey has been a story of cultural exchange. Centers of learning, such as Nalanda, strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks, scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Sambor Prey Kuk in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue, where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema, and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: Sachiv ne Brihattar Bharat ke bare mein bataya.
0: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा. बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता के दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?
2: सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है. इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है. इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे, और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है. तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं. तो भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विभिन्न विचारों और परंपराओं के साथ संवाद किया है, और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं. आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है
1: जी.
2: तो समय के साथ इसमें से अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे. दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया, और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे
1: जी.
2: बल्कि आपसी सीधे और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी. तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इसी के विषय में.
1: परमेश्वर जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं, और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा जिक्र किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर. जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं. तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
3: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है
1: जी.
3: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज जो हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहां भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं. विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है, और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है. जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया, और उन्होंने मुख्य रूप से जो मुझे लगता है कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया
1: जी.
3: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए. दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस देश में लाने

0: की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थी वो चली गई थी, कलाकृतियां थी, पांडुलिपियां थी, तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी थाती, पुराने पुरानी ज्ञान परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है
1: जी।
0: और यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनैतिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित की। और हम जानते हैं कि आज बहुध्रुवीय दुनिया है, ऐसे में भारत भी एक प्रमुख ध्रुव के तौर पर उभर रहा है। ये बहुत सी घटनाओं से हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं
1: जी। वाघवा जी, भारतीय विचारों और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में थल और समुद्री मार्गों से हुआ था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने सभी सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, व्यापारिक संबंधों की बात हो, या ऐसे कूटनीतिक संबंध हो जिन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना भी आवश्यक हो, उसके लिए भी पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए लगातार समुद्री मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहां तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
2: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण है, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है, और बौद्ध धर्म ने भी भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है। तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं, और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे
1: जी।
2: हम देखें तो इसका सांस्कृतिक मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बृहत्तर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा भारत का विश्वास है। और सांस्कृतिक की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां आरित की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण इस दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए, और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और भारतीय परंपरा में जो वैष्णव कुटुंबों का विचार है इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
1: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है, तो बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे समझना चाहे तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है, और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं, उनको आगे ले जाने की बात करते हैं।
2: जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है, और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य, नाटक और छायापुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो

0: इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिलाकर नए रूप दिए गए हैं। इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से सीखकर, परिवर्तन स्वीकार करके और नए विचार अपनाकर समृद्ध होती हैं। और भारत ने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी 2014 में, उस समय में विदेश मंत्रालय में सचिव था, तो मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमने काफी काम किया और कई देशों को बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसके चलते इन सभी देशों को भारत के साथ फिर से जोड़ने का काफी प्रयास किया था, क्योंकि भारत से बौद्ध विचार कई देशों में पहुंचे थे और बौद्ध भिक्षुओं ने लंबी यात्राएं की थी और विभिन्न देशों में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन के केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया था। अब हम चीन को ही देखें तो चीन से फाहियान और ह्वेनसांग जैसे यात्री
1: जी
0: भारत आए, उन्होंने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया। और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए। तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी मान्यता दे रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था, तो
1: जी
0: इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है।
1: जी पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है। तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूं तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है, या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है, या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
2: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार का प्रचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रचार भी किया। भारतीय लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी और विदेशी जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है। शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं। हुनरमंद भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा के बूते बड़ी और सम्मानजनक जगह बनाई है। ऐसे में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा इम्पोर्टेंस है।
1: जी,
2: जैसा आपने बताया कि विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध बृहत्तर भारत के जरिए जानने समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहत्तर भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य, मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनैतिक संबंधों को नए आयाम देना है। खास बात यह है कि सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक दैशिक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे एक दूसरे से संबंधित देशों के जब बनते हैं तो केवल भाषाई आधार पर नहीं, साहित्यिक आधार पर नहीं, विकास के और दूसरे जो बुनियादी माध्यम है उनके द्वारा नहीं, एक बहुआयामी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है और भारत सरकार ये काम कर रही है और काफी सफलतापूर्वक कर रही है, ये हम कह सकते हैं।
1: जी वाधवा जी, भारत चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आपने सिल्क रूट का भी जिक्र किया था। आज के समय में जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और एशिया में भी इसका असर देखा जा रहा है, तो साझा इतिहास जो हमारा रहा है बृहत्तर भारत में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे किस नजरिए से आज देख सकते हैं? क्या ये सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा, या इतिहास को वर्तमान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

0: स्पर्धा से हम अलग रखें या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
1: बेहतर भारत
0: जी
1: का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान विशेष महत्व रखता है। कभी विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें आपसी सम्मान और साझा हितों पर बहुत जोर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में और हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा और हमारी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
0: जी पराशर जी, बृहत्तर भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है, तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो?
2: निखिल जी, बृहत्तर भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026 से 2031 के बीच तक चलेगी और इसके बाद इसका कोई दूसरा चरण पर विचार किया जा सकता है। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां तक बात है तो ये भारत सरकार की बृहत्तर भारत योजना का ही हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य हैं उन्हें पहले समझ लेते हैं।
0: जी,
2: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन दाखिल करना भी इसका लक्ष्य है, और एक समर्पित डिजिटल बृहत्तर भारत पोर्टल तैयार करना ताकि वैश्विक स्तर पर इस साझा विरासत को शोधकर्ताओं और आम जनता तक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये सम्मेलन नई दिल्ली में क्यों किया जा रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी जान लें।
0: जी,
2: ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद यानी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, काउंसिल नहीं, परिषद के लिए काउंसिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की थी। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए, और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व, व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान प्रणालियां जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार इसका उल्लेख हुआ,

0: इससे संबंधित अध्ययन करना। दर्शन भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन। मूर्त वास्तुकला मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही इसका अध्ययन। प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे
1: जी।
0: उसका अध्ययन करना। वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता इसकी स्टडी करना। भोजन और पहनावे के माध्यम से संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना। अमूर्त विरासत का संरक्षण करना जैसे लोक कलाएं हैं त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति ये हासिल करना। और समकालीन दौर में यानी आज के दौर में कंटेम्पररी टाइम में सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है
1: जी। वाधवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है? हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
2: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में रहते हैं और मॉरिशस फिजी कैरिबियन देश हैं, अफ्रीका यूरोप उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है क्योंकि वो भारतीय भाषा बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु है। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य सिनेमा साहित्य और खान पान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं और भारत की संस्कृति में करुणा अहिंसा सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बेहतर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना
1: जी। पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं जहां पर बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों?
0: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं, लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी उल्लेख हुआ

0: प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्याध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, अनिल जी ने भी उल्लेख किया। भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य दिया, जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी। रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं। आजकल भारतीय संगीत, नृत्य परंपराएं, खान पान, शाकाहार, संयम, प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है, और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु, विदेशी नागरिक उसमें शामिल होने आए। और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं, लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
1: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो की घड़ी ते 10 बज रहे ने। आओ हुण सुणदे हां अज दियां मुख खबरां। सरकार वल्लों रेलवे मुलाजमां नूं 78 दिनां दे उत्पादकता आधारित बोनस नूं मंजूरी। 5 सालां दी म्याद लई राष्ट्रीय समाजिक सहायता प्रोग्राम नूं जारी रखण नूं वी प्रवानगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनेडा नाल एक उसारू अते अगा वधू रणनीतिक पाईवाली बनाने लई वचनबद्ध। भारत ने नागरिक बुनियादी ढांचे ते हमलियां दी निखेधी करदियां साउथ अरबी नाल एक जुकता प्रगट कीती है। मानसा विच नशे विरोधी कारकुन परविंदर सिंह चोटा दा कथित कातल गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिता है कि इस विच शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा। BSF ने तरन तारण की ड्रोन विरोधी टीम विच तैनात पंजाब पुलिस के कांस्टेबल तो 15 किलोग्राम तो वध हीरोइन जब्त की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 154 नवे आम आदमी क्लीनिक लोगों नूं समर्पित किए हैं। खेतीबाड़ी और विकास भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की उपजीविका विच सुधार करके एक आलमी भोजन भंडार बनन वल वध रहा है। सरकार वालों गन्ना किसान

0: ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्र सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं।

भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का

और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और दो अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपये नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

व्हाट्सएप जरिए प्रोग्राम विच शामिल होने लिए तुसीं 9465536077 ते अपना सुनेहा भेज देना या फिर 0181-43-4171 नंबर डायल करके फोन लाइन के जरिए साढ़े प्रोग्राम का हिस्सा बनना जी। कर रहे हैं शुरुआत इस प्रोग्राम की सरबजीत की आवाज़ के नाल।

जी ठीक। दसो केड़ा गाना सुनोगे अज फे? चाह गाना लो जी। ठंड दे विच तुसी चाह सानू भी याद करवाओगे फे, है ना? लो शुक्रिया तुहाडा बहुत बहुत जी। अंगद अलीवाल दी आवाज सुनदे हां जी अगला गीत चाह।

सुनिए जी, अगला गीत फिल्म लौंग दा लिशकारा विचों, और गीत भी इस फिल्म दे नाम दा, यानी कि इसका ही टाइटल सॉन्ग सुनते हैं। पिन सन फरमाइश आई है जी, पिन साबू आणा फाजिलका तो करण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश मानव, अनुप्रीत ते परीश कंबोज जी दी शुक्रिया प्रोग्राम दे विच शामिल होने दे लई। ते पप्पू राजा खुशदिल जी, तुहाडा भी स्वागत सारा परिवार। संगीता राणी जी, पप्पू समाइल खुशदिल, हंस मुखलाल, संदीप सुनीता, बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल, ते पूरा खुशदिल परिवार जुड़िया होया जी, तुहानू भी इसे गीत विच शामिल कर रहे हैं। स्वागत तुहाडा बहुत बहुत। ते हरजिंदर सिंह बराड़ फिर तो सुनेहा भेज रहे हैं जी, बिल्कुल तुहाडा सुनेहा पहुँच चुका है साढ़े कोल, तुहाडा भी स्वागत कर देना हाँ, ते इसे गीत के जरिए तुहानू भी शामिल कर रहे हैं।

लौंग तनिष्कारा गीत सुने सी मैनू परशोत्तम दिलराज कौर ते विनोद सैगल की आवाज़ के फिल्म लौंग तनिष्कारा विचों ही इस फिल्म का संगीत दिता सी जगजीत सिंह ते चित्रा सो उन्होंने सिर्फ गाया नहीं उन्होंने कई फिल्मों के संगीत भी दिता ते खास करके इस फिल्म ते ये गीत ये फिल्म होर भी खास हो जाती क्योंकि इस फिल्म के लिए जिहड़े गीत लिखे सन वो पंजाब के उस महान शायर शिव कुमार बटालवी ने सो असी तिना महान पंजाब की धरती तो पैदा हुए ना कलाकारां नू जिहड़ा याद कर लिया इस गीत नाल ते अगला गीत सुनते हैं जी कमल हीर की आवाज़ दे विच फरमाइश आई है कनेरा मोहला पटियाला तो मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक ते वंश बत्ता जुड़े हुए ने जनक नगर जलंधर तो सुखदेव सिंह जी नरेंद्र कौर ते सनी मनी ते काका ये भी प्रोग्राम सुन रहे हैं स्वागत तुहाडा बहुत बहुत आवाज कलम कमल हीर दी गीत सुनदे हां जी चंद जिया गबरू

अगले गीत सुनागे। फरमाइश आई है जी, गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो सुरेंद्र संधू, नीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतिशा संधू जुड़े हुए ने प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत भी ताड़ा प्रोग्राम दे विच। अगला गीत एक सदाबहार पंजाबी नगमा।

प्यारे जसू निहाया जी पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता राणी जजोरिया गगनदीप जजोरिया आरजू जजोरिया समेत गुड्डू जी भी जुड़े हुए हैं प्रोग्राम के बहुत बहुत स्वागत करता हाँ प्रोग्राम के गीत सुनते हैं जी। इस प्रोग्राम का अगला गीत गिपी गरेवाल की आवाज़ के

प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत ते इस वेले स्टूडियो कड़ी समा दस रही है। समा दस रही है कि जी दिन चढ़ गया है वीरवार का। सो 15 अक्टूबर का दिन, नवे दिन की शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत स्वागत थोड़ा सारे का प्रोग्राम दे विच। कृष्ण लाल राजू दीपू शीतल शारदा विवान गोपाल पिंड मलपुरी बिश्ना जम्मू तो जुड़े हुए ने जी। स्वागत करदा प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत बहुत। ते लो तुहाडी नज़र कर रहे हैं जी अगला गीत शाज़े मंसूर दी आवाज़ दे विच चरखा।

0: जी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम च।
1: थैंक यू जी। बस मैं तो सुन लगी सी, फिर उधर कॉल दी आवाज आ गई, मैं कहा चलो मला के देख लेनी
0: हां। नहीं जी असी ਤੁਹਾਨੂੰ हां जी 1 तरी 1 बजे तो पहला ना साडे प्रोग्राम सुन के फेस आया करो।
1: सुनने ਤੇ ਆਵਾਂ ਪਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੱਕ ਕੀ ਬੈਠ ਬੈਠ।
0: हां जी नहीं नहीं बिल्कुल ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।
1: बोलियां
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम च शामिल होने। लो सुनने सतविंदर बिटी की आवाज बोलियां।

प्रोग्राम स्वागत है आखिरी पड़ाव वाल वध रहे हैं। प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनांगे नूरा सिस्टर्स की आवाज़ दे विच, ते इसे नाल प्रोग्राम स्वागत नूं इत्थे समेटदे हां ते तुहाडे तों हरप्रीत लैंदा है इजाजत।

0: हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा, हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा। नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा।
1: कोट पैंट तो पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा।

शर्म न कर दी झूठ बोल दी लेके छापा छले लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले पुली जुली गहने पाते विकिया पीड़ी मूड़ा पुली जुली गहने पाते विकिया पीड़ी मूड़ा नी दस क्यों पाया सी नी दस क्यों पाया सी।

वादा चाड़ के ले आऊं मैं ठाणा दे तू कीता वादा चाड़ के ले आऊं मैं ठाणा दे तू कीता वादा थानेदार करवाऊगा ते तो करदा गोहा कूड़ा थानेदार करवाऊगा ते तो करदा गोहा कूड़ा वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा।

0: दीवाजदी कड़ा वजदा कड़ोली वजदी कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया।

0: गुरबाणी विचार। इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु रामदास महाराज जी का आगमन पुरब 27 अक्तूबर नूं सचखंड श्री दरबार साहब विखे श्रद्धा ते सत्कार दे नाल मनाया जा रहा। उहदे संबंध विच वड्डे जिहड़े प्रोग्राम लीके गए आ अमृतसर की धरती ते समूह सिंह समावां ते धार्मिक जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल जिथे अमृतसर शहर विखे गुरु घरां दे विच सवेरे 7 बजे तो 10 बजे तक सारे गुरु घरां दे विच प्रोग्राम लीके गए आ। ते इसे तरह मंजी साहब विखे बच्चियां दे शब्द कीर्तन, गुरबाणी कंठ, गुरमुखी लिखाई प्रोग्राम जिहड़े आ लीके गए आ। ते खालसा कॉलेज विखे भी ये समागम जिहड़े आ हो रहे आ। उहदे तहत 25 ते 26 अक्तूबर नूं मंजी साहब विखे जिथे राग दरबार ते पड़ताल शब्द गायन दे भी कीर्तन दरबार होणगे। 26 अक्तूबर नूं अमृतसर शहर विखे नगर कीर्तन भी कढ़िया जाएगा। 27 अक्तूबर नूं श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते बाबा टल राय विखे जलौस सजाए जाणगे। उत्थे सारा दिन जिहड़े कीर्तन दे समागम चलणगे ते नाल रात नूं आतिशबाजी होएगी। तिना समागमां दे विच कथा दे तौर ते भाई पिंदरपाल सिंह ते भाई बंता सिंह भी हाजिरी लवाउणगे। मेरी समूह संगत नूं बेनती कीती जांदी है कि इन्हां समागमां दा आपां लाहा लईए, वध चढ़ के श्री दरबार साहब विखे हाजिरी भरीए ते गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।

मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किच नाही, जम नहीं आवे नेरे। अकाल पुरख प्रभु पूरा वैद है, ओ अपने प्यारियां दे सारे दुख निवृत कर दिंदा है, इतों तक कि इंसान जन्म अते मरण दे गेड़ तो भी मुक्त हो जांदा है। मेरा बैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

मेरा बैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। प्रभु दे पै विच रहण वाले जिहड़े प्राणी उस नारायण प्रभु ते भरोसा रखदे हन, उस नूं अंग संग समझदे हन, उन्हां तों जम वी कोहां दूर रहिंदे हन। नाल नारायण मेरा जम दूत ना आवै नेरै, कंठ लाए प्रभ राखै सतगुर की सच साखै। इस शब्द का गायन कीता है भाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

औड़ी बिन सतगुरु की न पाया, बिन सतगुरु की न पाया। सतगुरु विच आप रखण कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम है विचार है जिन सच्चे सिओ चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

0: मेरा जनता नान जंतु पाए कै संभाले सब ना जिन करता करना किया चिंता फिक्र नीता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने भाग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख नेकियां चंगियां लख पुना प्रवान लख तप प्रतीर्थां सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लाग्यां ध्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा नी।

ਤੈਂ ਤੋ ਦਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾ ਸਾਧਕ

ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤ ਰੇ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋ

0: राज जोग लहना करे सतगुर कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरे गुरु जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे।
1: सदा कलिव रहे करम शिष्चा चार दुरम स्पूर जो निव खवे कस विमन विचार एह तत् जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज पाए संचयो किरन मत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रहाय लयो हर परस्यो कल समुल वै जन दर्शन लहने पायो।

0: करियो गुर हाथ, ताहे कहा परबार काहू की, जाके बसीस तरियो गुर हाथ।
1: अंत न पावत देव सबे मनो, इंदर महासेव जोग करी, कुन भेद बिरंच बेचार रहो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर जोत अर्जुन माहे तरी।
2: अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाखस फारे कर आज। हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत वस्त्र दीन बहुसाज। सोदामा पदाते राखिया, गनका पड़त पुरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न काल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज।
3: नाम नावन नाम रस खान, अर पूजन नाम रस। सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी, तन सतगुरु सेवियो। जिस पसाए गत अगम जानी, कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास। सकियत जन्म कल उचरै, गुर परस्यो अमर परगास।
4: सत सूरो सील बलवंत, सत पाए संगत सगन। गरु मत निर्वैर लीणा, जिस तीरज तुर तवल तुजा। सेत बैकुंठ बीणा, परसे संत प्यार। जहे कर तारे संजोग, सत गुरु सेव सुख पायो, अमर गुर की तो जोग। हमें आव गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से प्रीत लग। एक

0: रस जाने।
1: तारे संसार माया मनमोहित अमृत नाम दियो समर्थ फुन कीरतवंत सदा सुख संपत हृदय सिद्ध न छोटे सत दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ ताहे कहां परवाह काहू की जाके बसीस।

ਆਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੋਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ।

सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जानम जानम दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहा दैसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन।

सबना दा वेसा हो सत

छंत महल्ला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद

सतगुरु मिला सुभाय, सहज गुण गाइए जियो, हर जियो कृपा करे, ता नाम त्याइए जियो, सतगुरु मिला सुभाय, सहज गुण गाइए जियो, गुण गाए विगसै सदा आनंद लां, जा आप साचे पावै, अहंकार हो मैं तजै माया,

Pure Satgora Jiyong, how this is a

ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਵਡ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਆਵੈ।

सहज समाव ताहर मन पाव सदा अतीत बैरागी हालत पालत सोबा जग अंतर राम नाम लेव लागे हरख सोग दोहाते मुक्ता जो प्राप करे सो पावे सत संगत मिला वड भाग ताहर रस आवे जियो दूजा पाए दुख हो मन मुख जाम जोहे आजियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहे आजियो माया दुख मोहे हौ मैं रोहे मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेता नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ ना चले पुत्र कलत्र माया तोहिया दूजा पाए दुख मन मुख जम जोहिया जियो कर कृपा ले हो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुकम समावे हुकम मन सुख पाया आन दिन जपत रहे दिन राती।

मन को नाम मन पावे।

मिली वडियाई। नानक नाम मन पावे, कार कृपा ले हो मिलाए।